FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार दिनांक 28 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं और अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं हजरत मोहम्मद साहब के विचार।
3: हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, काले को गोरी पर, न गोरी को काले पर कोई बड़ाई और फख्र नहीं। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से थे। खुदा के निकट सबसे बड़ा वही है जो तुम में सबसे अधिक संजम वाला है। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम इंसाफ न करो, बल्कि अदल व इंसाफ करो, क्योंकि वह संजम और परहेजगारी से ज्यादा करीब है। सवाल करना सिर्फ इन तीन में से किसी एक के लिए वैध या जायज है। किसी पर कोई बोझ या तावान डाल दिया जाए तो उसके लिए सवाल करना जायज है, ताकि वह जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाए, उसके बाद वो सवाल करने से रुक जाए। किसी पर कोई ऐसी घटना आ जाए जिससे उसका तमाम माल तबाह हो जाए तो उसके लिए सवाल करना वैध है, यहाँ तक कि उसका जरिया माश दुरुस्त हो जाए, जिससे वो व्यक्ति जो मोहताजी और फाके में मुब्तिला हो तो उसको भी सवाल करना वैध है, यहाँ तक कि कोई जरिया माश हासिल हो जाए। इनके अतिरिक्त दूसरों को सवाल करना हराम है, और जो सवाल करे वो हराम खाता है। तुम में से बेहतरीन मनुष्य वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतरीन इंसान हूं। एक शरीफ इंसान ही स्त्रियों की इज्जत करता है, वो जलील है जो इनकी तौहीन करता है।

0: तुम्हारे नौकर, गुलाम, तुम्हारे भाई हैं जिनको तुम्हारा मातहत बनाया गया है। लिहाजा जिसका भाई उसके मातहत हो तो वो उसे वही खिलाए जो वो खाता हो और वही पहनाए जो वो पहनता हो और उनसे हद से ज़्यादा काम न कराए। अगर तुम हद से बढ़कर उनसे कोई काम कराओ तो उसमें उनका हाथ बताओ। खुदा की कसम तुम्हें नेक कामों की हिदायत करनी होगी और बुरे कामों से लोगों को रोकना होगा। इसके बाद तुम जालिम के हाथ को रोकोगे और उसे हक की ओर मोड़ कर लाओगे ताकि वो अपने आप को वास्तविकता और सत्यता में सीमित रखे, वरना खुदा तुम्हारे दिलों को बिगाड़ देगा। और जिस तरह नाफरमान बनी इसराइल पर लानत भेजी थी उसी तरह तुम पर भी लानत भेजेगा। खुदा हर वो कार्य स्वीकार करता है जो उसी के लिए किया गया हो और उसके जरिए से उसकी प्रसन्नता प्राप्त की जाए। जिस काम में खालिक की नाफरमानी होती हो उसमें मखलूक की फर्माबरदारी नहीं है, खुदा उस कौम को साफ सुथरा नहीं बनाता जो किसी ताकतवर से उसको तकलीफ दिए बगैर किसी कमजोर का हक दिला सके। जब कोई किसी को कर्जा दे तो वो उसका उपहार यानी उसे तोहफा ना कबूल करे। और आपने ये भी फरमाया कि जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे हजरत मोहम्मद साहब के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ओ पालनहारे, तू ही जीवन का आधार है। तेरे बिना सोना हर सपना, हर रिश्ता बेकार है। जब जब मन थक कर दुनिया से हारने लगता है, तेरा नाम ही फिर से जीने का साहस देता है।

राम केवल नाम नहीं, जीवन जीने का आधार है। मर्यादा, प्रेम और सत्य के सबसे सुंदर विचार हैं, जो राम को हृदय में बसाकर हर कर्म निभाता है, उसका जीवन स्वयं ही प्रभु का आशीर्वाद बन जाता है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब नाम प्रभु का गाना है। मोह माया की नींद छोड़ भक्ति मार्ग अपनाना है। ये जीवन पल दो पल का है, कब सांस रुक जाए कौन जाने। इससे पहले हरि स्मरण कर प्रभु चरणों में मन लगाना है।

अंतर मन जब शांत होता है तभी प्रभु का स्वर सुनाई देता है। भीतर की पवित्रता में ही ईश्वर का प्रकाश खिलता है। दुनिया में जिसे हम बाहर खोजते फिरते हैं वो अंतर मन की भक्ति में ही सहज मिल जाता है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति देने वाले, तेरी नज़र में एक समान मंदिर मस्जिद वाले, प्रेम दया और मानवता ही सच्ची पूजा कहलाती है। जिस दिल में सबके लिए जगह हो वहीं तेरी ज्योति जगमगाती है।

इसी भजन के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने लता मंगेशकर, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, विजय प्रकाश व साथी और मोहम्मद रफ़ी व साथियों के गाए भजन सुने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज की बात। आज की बात सुनने वालों को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 28 मई और आइए जानते हैं इतिहास में आज के दिन की खासियत। श्रोताओं, हर साल 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में मानवाधिकारों के महत्व को उजागर करने, उनके उल्लंघन के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और न्याय व समानता के लिए लड़ने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल के योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। श्रोताओं, इस गैर सरकारी संस्था की स्थापना 1961 में ब्रिटिश वकील पीटर बेनेंसन द्वारा की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना तथा मानवाधिकारों के हनन को रोकना है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। श्रोताओं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है, जिसमें दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के 10 मिलियन से अधिक सदस्य और समर्थक शामिल हैं। 1977 में मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और बचाव के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, हर वर्ष 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये एक वार्षिक जागरूकता दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अच्छी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के महत्व को उजागर करना है। इसकी शुरुआत जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन वाश यूनाइटेड ने 2013 में की थी और इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। श्रोताओं, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रसारित करने और नीति निर्माताओं को नीतिगत संवाद में शामिल करने का एक अवसर है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियों और कार्यक्रमों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को एकीकृत करने की वकालत करना है। श्रोताओं, हर साल 28 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय हैमबर्गर दिवस मनाया जाता है। ये दिन इस बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट सैंडविच को समर्पित है, जिसे मांसाहारी या शाकाहारी पैटी, ब्रेड बन और विभिन्न प्रकार की टॉपिंग के साथ तैयार किया जाता है। श्रोताओं, इसकी सटीक उत्पत्ति को लेकर कई दावे हैं, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार बर्गर 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में काफी लोकप्रिय हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बर्गर दिवस के मौके पर कई रेस्टोरेंट और फूड ब्रांड्स जैसे बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड या स्थानीय कैफे अपने ग्राहकों के लिए खास डील्स, कॉम्बो और डिस्काउंट ऑफर पेश करते हैं। श्रोताओं, ये फास्ट फूड दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंदीदा स्नैक्स में से एक है। श्रोताओं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भगोरगांव नासिक में हुआ था। ये न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक दृष्टा, महान कवि, महान इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। इनके इन्हीं गुणों ने इन्हें महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। श्रोताओं, सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 के बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दे विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। इन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास 1907 में लिखा। श्रोताओं, सावरकर ने ही वो पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 के अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध, मेरा आजीवन कारावास और अंडमान की प्रतिध्वनियां अधिक प्रसिद्ध हैं। 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर का निधन हो गया। श्रोताओं, भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने समाज सेवक और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सह संस्थापक गोपाल रामानुजम का जन्म 28 मई 1915 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के एडिर कोटल गांव में हुआ था। ये 22 अगस्त 1997 से 24 नवंबर 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्रोताओं, गोपाल रामानुजम को समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए
भारत सरकार ने सन 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 26 जून 2011 को गोपाल रामानुजम का स्वर्गवास हो गया। श्रोताओं, तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता नंदमुरी तारक रामाराव का जन्म 28 मई 1923 को मद्रास में हुआ था। ये अभिनेता के साथ ही एक अच्छे राजनेता भी थे। एनटीआर के उपनाम से प्रसिद्ध रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। श्रोताओं, राजनीति में आने से पहले ये तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। इन्हें हिंदू देवताओं जैसे कृष्ण और राम के जीवन से संबंधित बहुत सी फिल्मों में काम किया और दर्शकों के चहेते बन गए। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए ये भारत सरकार के द्वारा सन 1968 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। 18 जनवरी 1996 को इनका देहांत हो गया। श्रोता, भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 9 सितंबर 1907 को गुजरात में हुआ था। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष महबूब खान को एक ऐसे शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिकी फिल्मों को तोहफा दिया। इनकी प्रमुख फिल्में हैं सन ऑफ इंडिया, मदर इंडिया, अमर, आन, अंदाज, अनोखी अदा, ऐलान, अनमोल घड़ी, हुमायूं, नाजिमा और तकदीर आदि। 28 मई 1964 को महबूब खान इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज देश और दुनिया भर में ईद उल जुहा का पावन त्यौहार बेहद हर्षोल्लास, सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। तो आप सभी श्रोताओं को इस मुबारक मौके की ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस त्यौहार को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई खूबसूरत नामों से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीपों में इसे हम मुख्य रूप से ईद उल जुहा या बकरीद के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, अरबी भाषा में इसे ईद उल अधा कहा जाता है, जिसका असीधा अर्थ है समर्पण और सच्चाई का पर्व। वहीं तुर्की, ईरान और मध्य एशिया के कुछ देशों में इसे कुर्बान बैरामी या ईद कुर्बान के नाम से भी पुकारा जाता है। श्रोताओं, नाम भले ही भिन्न हो, लेकिन इसके पीछे की भावना, इसका संदेश हर देश और हर संस्कृति में एक समान है, और वो है मानवता और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम। श्रोताओं, ये वैश्विक भाईचारे का ऐसा पर्व है जो किसी एक सीमा में बंधा हुआ नहीं है। इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक और हमारे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से लेकर सऊदी अरब, मिस्र के तमाम देशों तक पूरी दुनिया में आज के दिन एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। श्रोताओं, आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग पारंपरिक परिधानों में सजे धजे मस्जिदों और ईदगाहों की ओर रुख करते हैं। वहाँ कतारों में बैठकर विशेष नमाज अदा की जाती है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं, तो मजहब और ऊंच नीच की सारी दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। श्रोताओं, अब आइए थोड़ा पीछे इतिहास के झरोके में चलते हैं और जानते हैं कि इस पावन पर्व को मनाने के पीछे का मूल कारण क्या है। श्रोताओं, ये त्यौहार हजरत इब्राहिम के जीवन की एक महान परीक्षा और उनके अटूट विश्वास की याद में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के समर्पण को परखने के

लिए उनसे उनकी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने को कहा। हजरत इब्राहिम के लिए उनके पुत्र हजरत इस्माइल से प्रिय संसार में और कुछ नहीं था, लेकिन कर्तव्य पथ पर चलते हुए और अल्लाह के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण वे अपने पुत्र का भी परित्याग करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। श्रोताओं, अल्लाह को किसी की जान या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, वे केवल हजरत इब्राहिम के मन का निस्वार्थ भाव, अटूट विश्वास देख रहे थे। जैसे ही वो इस परीक्षा में सफल हुए, उनके पुत्र को जीवनदान मिला। श्रोताओं, ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी समाज, राष्ट्र या मानवता की भलाई के लिए किसी बड़े त्याग की आवश्यकता हो, तो इंसान को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर आना चाहिए। श्रोताओं, आज के आधुनिक संदर्भ में इस त्यौहार का सबसे बड़ा सामाजिक संदेश यही है कि हम अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी बुराइयों को हमेशा के लिए छोड़ दें। श्रोताओं, इस दिन जो भी विशेष भोजन या पकवान तैयार होता है, उसकी सामाजिक व्यवस्था बेहद अनुकरणीय है। उस भोजन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के निर्धन, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों में सम्मानपूर्वक वितरित किया जाता है। दूसरा हिस्सा मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए होता है और तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा जाता है। श्रोताओं, भारत में इस दिन इस त्यौहार पर मीठे व्यंजन भी बनाए जाते हैं। ये व्यवस्था हमें सीख देती है कि सच्चा आनंद अकेले खुशियां मनाने में नहीं, बल्कि समाज के हर तबके को अपने साथ लेकर चलने में है। तो आइए, आज इस पावन दिन पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने दिलों में प्रेम, करुणा और भाईचारे की भावना को और मजबूत करेंगे। आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे का हाथ थामेंगे। इन्हीं पाक और कल्याणकारी विचारों के साथ एक बार फिर से आप सभी को ईद उल जुहा की दिले मुबारकबाद। इसी के साथ ही संपन्न होता है आज का कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और उसके बाद हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000-2,000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure.

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज अपराह्न 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस से 107वां प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और शैलस्वर कार्यक्रम में शाम 5:05 पर। कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर आप सुनते हैं सुबह 11:30 पर। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दोपहर 2 बजे। सुबह 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा बचत विषय पर ललित सिंह।

पैरा की वार्ता। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरंग होगा सुबह 10:05 पर। सुगम संगीत दोपहर 1:15 पर और सबरस रात्रि 8:00। दोपहर 12:30 पर अर्पण कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा खुश रहें तनाव मुक्त रहें। साथ ही सुनिएगा मासिक धर्म जागरूकता विषय पर रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीमती ईला शाह से गुड्डी नयाल की बातचीत। दोपहर 1:30 पर सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1294वीं कड़ी। दोपहर 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिएगा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण तथा मृदा उपचार विषय पर डॉक्टर विजय सिंह मीणा की वार्ता। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य भी है जरूरी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा जनजातीय कल्याण योजना। साथ ही सुनिएगा बेजुबान की सेवा ही मानवता विषय पर शशि पाठक की वार्ता। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शाम 7:00 किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा पर्वतीय क्षेत्रों में स्वीट कॉर्न की उपयुक्त किस्में। साथ ही आप सुनेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक उर्वरक की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा से भेंटवार्ता। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हजरत अमीर खुसरो के कृतित्व पर केंद्रित संजय सिंह वर्मा का लिखा रूपक तूती हिंद। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे परमर्शी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में सुबह 9:05 पर। सुरबहर कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में सुबह 11:00। मेरी पसंद कार्यक्रम में दोपहर 12:00। एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर। सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में अपराह्न 3:00 और इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। निजी प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस से 107वां प्रसंग।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

श्री रामचरितमानस से अभी आप सुन रहे थे 107वां प्रसंग। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के संचालन के लिए नई एसओपी जारी की। पशुओं के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित संचालन को अनिवार्य किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ईद उल जुहा के अवसर पर देहरादून में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आज विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश

0: कि प्रत्येक जरूरतमंद लोगों तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर घोड़ा, खच्चर जैसे अश्ववंशीय पशुओं के संचालन के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। सरकार के अनुसार यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के साथ साथ पशुओं के संरक्षण और कल्याण को ध्यान में रखकर लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई SOP के अनुसार यात्रा मार्गों की वहन क्षमता तय की गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अधिकतम 5,000, हेमकुंड साहिब मार्ग पर लगभग 1,050 और यमुनोत्री मार्ग पर करीब 595 अश्ववंशीय पशुओं के संचालन की अनुमति होगी। सरकार ने सभी पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया है। पंजीकरण से पहले स्वास्थ्य परीक्षण, ग्लैंडर्स जांच, एयर टैगिंग और माइक्रोचिपिंग जरूरी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की वैधता 45 दिन रहेगी, जिसके बाद दोबारा जाँच करानी होगी। अपंजीकृत पशुओं के संचालन पर रोक रहेगी। SOP में पशु कल्याण को प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्गों पर पानी, चारा और इलेक्ट्रोलाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुओं के लिए हल्की और वाटरप्रूफ काठियों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। नई व्यवस्था में पशुओं पर अधिक भार लादने, घायल या बीमार पशुओं से काम लेने, बिना टोकन संचालन और पशुओं के साथ क्रूरता करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने, ब्लैकलिस्ट करने और FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। SOP के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पशुओं के संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। खराब मौसम, बारिश या बर्फबारी की स्थिति में भी संचालन रोका जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुपालन विभाग में सहायक कृषि अधिकारी और चारा सहायक के 90 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 1 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन 24 से 26 जून तक आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई तक शाम 6 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। इस दौरान संगठनात्मक बैठकों के साथ संत समाज, युवाओं और शिक्षाविदों से संवाद पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि श्री नवीन प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी और मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सांसदों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। कार्यक्रम के तहत महापौरों, नगर निकाय प्रतिनिधियों, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ भी संवाद किया जाएगा। वहीं शाम को मीडिया, सोशल मीडिया, IT विभाग के कार्यकर्ताओं और प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम रखा गया है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों के कार्यों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। गृह राज्य मंत्री ने काली नदी पर बने भारत नेपाल सीमा के धारचूला झूला पुल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें सीमा क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधन और सीमा संपर्क दल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। इसके बाद नित्यानंद रॉय ने सीमा चौकी धारचूला पहुंचकर जवानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल देश की पहली सुरक्षा पंक्ति है और कठिन परिस्थितियों में उनका समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। ईद उल जुहा के अवसर पर आज देहरादून में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। यह व्यवस्था सुबह 6 बजे से शुरू की गई है, जो 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। विंदाल क्षेत्र की ओर जाने वाले यातायात को डायवर्ट किया गया है। विंदाल की ओर जाने आने वाले वाहन कैंट मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वहीं राजपुर रोड से विंदाल की ओर जाने वाले वाहनों को घंटाघर से दर्शनलाल चौक की ओर भेजा जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर घंटाघर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को कैंट क्षेत्र की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने बताया कि नमाज अदा करने के लिए आने वाले नमाजियों को घंटा

0: घर से विंदाल मार्ग पर जाने की अनुमति रहेगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में 7 प्रमुख बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं। टिहरी गढ़वाल के गजा में आयोजित गजा घंटा गण महोत्सव 2026 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए धार्मिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क संपर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने घंटाकण महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण, कोटेश्वर झील विकास, डांडाचली में इको पार्क निर्माण तथा गजा क्षेत्र में विभिन्न आंतरिक मार्गों के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही गजा मैदान के विस्तारीकरण और मंच निर्माण को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने शहीद विक्रम सिंह नेगी राजकीय पॉलिटेक्निक गजा में फार्मेसी विषय शुरू करने की घोषणा की। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए चाका महिला अस्पताल को PHC में उच्चीकृत करने और चाका में सामुदायिक भवन के सुदृढ़ीकरण की बात कही। मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगटाली और पंजे गांव को इंटर स्तर तक उच्चीकृत करने तथा नरेंद्र नगर महाविद्यालय को PG स्तर पर विकसित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गजा महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक विरासत को सहेजने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य करती है।
1: इस भव्य महोत्सव के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का ये बहुत सराहनीय प्रयास घंटाकरण महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी को सजोए रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के संचालन के लिए नई SOP जारी की। पशुओं के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित संचालन को अनिवार्य किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ईद उल जुहा के अवसर पर देहरादून में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आज विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कमललाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: के सुशासन की नई कीर्तिमान
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कमल लाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: कमललाल की गाई सी चैती के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा लोक मंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा बचत विषय पर ललित सिंह तुलैरा की वार्ता।
1: मानव सभ्यता का विकास ऊर्जा के उपयोग के साथ साथ आगे बढ़ा है। आदिम मानव ने अग्नि की खोज की, फिर कोयला, पेट्रोलियम, बिजली और परमाणु ऊर्जा तक पहुंच गया। आज का आधुनिक जीवन ऊर्जा के बिना लगभग असंभव है। घरों की रोशनी, उद्योगों की मशीनें, परिवहन के साधन, मोबाइल और इंटरनेट सब ऊर्जा पर निर्भर हैं। किंतु वर्तमान समय में विश्व जिस प्रकार के संकटों से गुजर रहा है, उसने ऊर्जा के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईरान अमेरिका जैसे देशों के बीच संघर्ष की आशंकाएं, तेल उत्पादक क्षेत्रों में अस्थिरता तथा लगातार बढ़ती ऊर्जा मांग ने यह सिद्ध कर दिया है कि ऊर्जा केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। ऐसे समय में ऊर्जा बचत केवल व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक जिम्मेदारी बन गई है। ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा कारण जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस पर अत्यधिक निर्भरता है। दुनिया का अधिकांश परिवहन तंत्र अभी भी पेट्रोलियम पर आधारित है। यदि किसी कारणवश तेल उत्पादक देशों में युद्ध या राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है, तो इसका सीधा प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, परिवहन महंगा हो जाता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ता है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां इसी तथ्य को उजागर करती हैं कि ऊर्जा संसाधन सीमित हैं और उनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऊर्जा बचत का महत्व और भी अधिक है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग आयात करता है, विशेषकर कच्चे तेल के लिए भारत कई देशों पर निर्भर है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर तुरंत दिखाई देता है। महंगाई बढ़ती है, परिवहन खर्च बढ़ता है और आम लोगों की जीवन शैली प्रभावित होती है। इसलिए ऊर्जा बचत केवल बिजली का बिल कम करने का उपाय नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती से जुड़ा विषय है। ऊर्जा बचत का सबसे सरल और प्रभावी क्षेत्र घरेलू जीवन है। हम अपने दैनिक व्यवहार में छोटे छोटे परिवर्तन करके बड़ी मात्रा में ऊर्जा बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए अनावश्यक रूप से जलते हुए बल्ब और पंखे बंद करना, एलईडी बल्बों का प्रयोग करना, बिजली की कम खपत वाले उपकरण अपनाना, दिन में प्राकृतिक प्रकाश का अधिक उपयोग करना तथा मोबाइल और अन्य उपकरणों को आवश्यकता से अधिक चार्जिंग पर न छोड़ना। ये सभी साधारण उपाय हैं, किंतु इनका सामूहिक प्रभाव अत्यंत बड़ा हो सकता है। यदि करोड़ों लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बिजली बचाएं, तो देश में हजारों मेगावाट ऊर्जा की बचत संभव है। परिवहन के क्षेत्र में भी ऊर्जा संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। आज अधिकांश वाहन पेट्रोल और डीजल पर चलते हैं। व्यक्तिगत वाहनों की बढ़ती संख्या ने ईंधन की खपत को बहुत बढ़ा दिया है। यदि लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल या पैदल चलने की आदत विकसित करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें तथा कारपूलिंग जैसी व्यवस्थाओं को अपनाएं, तो ईंधन की बड़ी मात्रा बचाई जा सकती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

स्रोतों को बढ़ावा देना भी समय की मांग है। भारत सहित कई देश अब सौर ऊर्जा और बिजली आधारित परिवहन को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि पेट्रोलियम पर निर्भरता कम की जा सके। ऊर्जा बचत का संबंध केवल आर्थिक पक्ष से नहीं बल्कि पर्यावरण से भी है। जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें वातावरण में बढ़ रही हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि ऊर्जा का अनियंत्रित दोहन इसी प्रकार जारी रहा तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए ऊर्जा बचत पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम कम बिजली खर्च करते हैं या कम ईंधन जलाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण को भी कम करते हैं। वर्तमान समय में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोगैस जैसे स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, बल्कि दीर्घकालीन समाधान भी प्रदान करते हैं। भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। गांवों और शहरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं जिससे बिजली उत्पादन में सहायता मिल रही है। यदि प्रत्येक घर और संस्थान अपनी आवश्यकता का कुछ भाग सौर ऊर्जा से पूरा करे तो पारंपरिक बिजली पर दबाव कम हो सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन जैसी योजनाएं भी ऊर्जा संकट के समाधान में सहायक हो सकती हैं। ऊर्जा बचत के लिए सरकारों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारें यदि ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा दें, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाएं, उद्योगों में ऊर्जा मानकों को अनिवार्य करें और लोगों को जागरूक करें तो व्यापक स्तर पर परिवर्तन संभव है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि बचपन से ही जिम्मेदार नागरिक तैयार हो सकें। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, लोगों में ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना भी आवश्यक है। आज ऊर्जा केवल संसाधन नहीं बल्कि सामरिक शक्ति बन चुकी है। जिन देशों के पास ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण है वे वैश्विक राजनीति में अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। यही कारण है कि तेल और गैस को लेकर विश्व में अनेक संघर्ष होते रहे हैं। ईरान अमेरिका जैसे तनावपूर्ण संबंधों का प्रभाव केवल उन देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार को प्रभावित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि विश्व को स्थिर और सुरक्षित बनाना है तो ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग और वैकल्पिक स्रोतों के विकास पर गंभीरता से कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल ऊर्जा खपत भी वर्तमान समय का उभरता हुआ विषय है। आज इंटरनेट, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकरेंसी और लगातार बढ़ते ऑनलाइन कार्यों में भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है। सामान्य व्यक्ति को यह दिखाई नहीं देता लेकिन मोबाइल पर घंटों वीडियो देखना, क्लाउड स्टोरेज का अत्यधिक उपयोग या लगातार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सक्रिय रहना भी ऊर्जा की बड़ी खपत से जुड़ा है। भविष्य में डिजिटल दुनिया जितनी विस्तृत होगी ऊर्जा की मांग भी उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए स्मार्ट उपयोग की आदत विकसित करना आवश्यक होगा। ऊर्जा बचत के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा की असमानता भी है जिस पर सामान्यतः कम चर्चा होती है। दुनिया के अनेक विकसित देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बहुत अधिक है जबकि कई गरीब और विकासशील देश क्षेत्रों में आज भी लोग मूलभूत बिजली और ईंधन सुविधाओं से वंचित हैं। यह स्थिति बताती है कि ऊर्जा केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संसाधनों के संतुलित वितरण का भी प्रश्न है। यदि दुनिया के समृद्ध समाज अनावश्यक उपभोग को कम करें और ऊर्जा दक्ष तकनीकों को साझा करें तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ऊर्जा बचत का संबंध संस्कृति और जीवन शैली से भी है। भारतीय परंपरा में सादगी, संतुलित उपयोग और प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावना रही है। पहले लोग आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करते थे जबकि आधुनिक उपभोक्तावाद ने अत्यधिक उपभोग को प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। आज आवश्यकता और दिखावे के बीच का अंतर समझना भी ऊर्जा संरक्षण का एक नैतिक पक्ष है। अंततः कहा जा सकता है कि ऊर्जा का बचत आज की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। यह केवल बिजली बचाने या पेट्रोल कम खर्च करने तक सीमित विषय नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा और

0: मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। यदि आज मानव समाज ऊर्जा के प्रति जिम्मेदार नहीं बना तो आने वाले समय में ऊर्जा संकट और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करे और अनावश्यक अपव्यय से बचे। छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। ऊर्जा की रक्षा वास्तव में भविष्य की रक्षा है।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा बचत विषय पर ललित सिंह तुलेरा की वार्ता। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से

0: अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुँचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू

0: स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
1: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया, एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27

0: प्रतिशत कमी की घोषणा के दो सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. Anupam Mishra,

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित बलदेव राज वर्मा का राग नट भैरव में गाया ख्याल। आपके साथ तबला संगत की थी विजय कृष्ण ने और हारमोनियम पर थे नरेश मल्होत्रा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचे को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद आखिरकार केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2

0: दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुपुरा में के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए। रहीम को एक 15 वर्षीय विकलांग लड़के की मौत के संबंध में दोषी ठहराया गया था। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरी ईद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 196 रन ही बना सके। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की सुबह मोहब्बत, कुर्बानी और इंसानियत का पैगाम लेकर आई है, क्योंकि आज मनाया जा रहा है मुबारक त्यौहार ईद उल अधा का। श्रोताओं, ये त्यौहार हमें सिखाता है कि सच्ची इबादत सिर्फ दुआओं में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दिल में मोहब्बत, अपनापन और इंसानियत रखने में होती है। आज हर घर में खुशियों की रौनक है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है और हर दिल से बस यही दुआ निकल रही है कि सबकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और खुशियां बनी रहे। तो आप सभी को दिल से ईद मुबारक। और इसी प्यारे से एहसास के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र इस प्यारे से गीत के साथ।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम, अलका याग्निक और साबरी ब्रदर्स की आवाज़ों में हीरो हिंदुस्तानी फिल्म से। गीत गौहर कानपुरी का था और संगीत अनु मलिक का। फरमाइश करता थे ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। नाज मंजिल बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, पुत्र वसीम अकरम, बहू रुबेना वसीम, पौत्र आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। मुरादाबाद से जाफर

हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी ने। श्रोताओं, लीजिए अब पेश है कुर्बानी फिल्म का गीत किशोर कुमार, अनवर और अजीज़ नाजा की आवाज़ों में। इंदिवर के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार, बक्सर से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी, बिहार दिल्ली से बेबी अंसारी, छटिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, लखमीनिया बेगूसराय से एकलाक अहमद फूलवाले, छोटी बलिया करजत से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरैशा बेगम फूलवाले, गंज डुंडवारा से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले, शेख समा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम, बिहारी कॉलोनी से नसीमुल गुस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लोहरा बलोच से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप बिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है कुर्बानी फिल्म का ये गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पीपरिया से दुर्गा राम साहू, करनाल से सुधीर, संदीप बगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और जगमोहन प्रजापति, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। हमारे ही सभी श्रोता सुनना चाहते हैं सोनू निगम की आवाज़ में पुलिस गिरी फिल्म का ये गीत। हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में शब्द रचना शब्बीर अहमद की है।

विनीत सिंह, शबाब साबरी और पलक मुच्छल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे पुलिस गिरी फिल्म से। श्रोताओं, लीजिए पेश है मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध गीत तीसरी कसम फिल्म से। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें किया है दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय तुषार तामोरिया, डॉली बीबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी तामोरिया। ग्राम बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और अंजलि सारवा। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, फारूक भाई, लल्लन मिश्रा, जयंत, कुमारी बैरागी, ऐशबाग पीले कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, पलक और पंखुड़ी। कांति निकेतन राजनगर मधुबनी से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता ने। तो लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत।

प्यार किया तो डरना क्या, लीजिए पेश है इस फिल्म का गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। सुधाकर शर्मा के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। मोरटक्का माफी जिला खंडवा एमपी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, ललिता मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल।

राजनगर गांधी चौक, कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन। ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेम नेताम और कुसुम नेताम। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता ने। तो लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है गीत निर्झर। श्रोताओं, लीजिए पेश है राज फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में शब्द रचना समीर की है और इस गीत के इंतजार में है वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता, राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर पेश है राज फिल्म का ये गीत।

इस गीत के बाद लीजिए पेश है आनंद बख्शी के बोलों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज सरगम फिल्म के लिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और इस गीत को सुनना चाहा है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर अपेक्षा अमीन दीवान और आदेश कुमार काले। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, बुल्की वाली फलना झा, नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभम चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। भाटापारा ददरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सरगम फिल्म का ये गीत।

लौंडे, बल्ला रशा से सूरज लौंडे, प्राची लौंडे और एकलव्य लौंडे, बठिंडा से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, तपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजोत, जालना से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, साक्षिताई राजे जाधव, संचित वयाल, आरेगांव, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली देशमुख और कुमारी सान्विक देशमुख, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद बोरगांवकर और सुभाष बोरगांवकर ने।

श्रोताओं, लीजिए पेश है उदित नारायण की आवाज़ में रोक फिल्म का ये गीत। नीलेश मिश्रा के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है MM करीम ने और फरमाइश करता है पांठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे।

उदित नारायण के गाए रोग फिल्म के गीत के साथ ही श्रोताओं आज के फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं कोचीपलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान

0: रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं रवि की गाई इस गजल के साथ।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, लीजिए पेश है गोपाल दास नीरज की रचना जीवन चंद्र, आर्या की आवाज में।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपर आयुक्त दिपेश गहलोत ने इसका निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षिक सत्र 2026-27 से किया जाएगा। विद्यालय की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय खुलने से क्षेत्र में शिक्षा और अनुकूल वातावरण सृजित होगा और क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। पिथौरागढ़ जिले में शासन प्रशासन द्वारा शुरू की गई हेलो हेल्प हेल्पलाइन आम लोगों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। इसके माध्यम से जिलेवासी अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्रतिदिन करीब 15 से 20 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान करना है।
1: पिथौरागढ़ जो हेल्पलाइन यहाँ पर जारी की गई थी, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है और लगातार उसमें जो आम जनमानस की तरफ से शिकायतें उसमें दर्ज हो रही हैं। इसमें लगभग 25 शिकायतें ऐसी हैं जिनका निस्तारण होने के उपरांत शिकायतकर्ताओं ने अपनी संतुष्टि भी उसमें व्यक्त की है, क्योंकि शिकायतें उसमें लगातार आती जा रही हैं। तो पूरा प्रयास यह है कि उनका टाइमली डिस्पोजल किया जाए और संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए। अभी जो है 200 के करीब में शिकायतें दर्ज हो गई हैं और उसका निराकरण किया जा रहा है। निराकरण की स्टेज में भी काफ़ी सारी शिकायतें हैं और हम लगातार संवाद बनाए हुए हैं जो शिकायतकर्ता है। हम प्रयास यही है कि जल्द से जल्द अच्छा निस्तारण हो, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो और संबंधित शिकायतकर्ता को अवगत।
0: वहीं पिथौरागढ़ के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र राउत ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से लोग बिना किसी परेशानी के सीधे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का भरोसा व्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है। पौड़ी जिले में वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिविल स्वयं वन प्रभाग की सतपुली रेंज के कलजीखाल क्षेत्र में आग लगाने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। DFO सिविल स्वयं वन पवन नेगी ने बताया कि जंगलों में आग लगने के आरोप में ग्राम फालदा निवासी 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वनाग्नि की किसी भी घटना की तत्काल सूचना वन विभाग को दें और जंगलों को आग लगने से बचाने में सहयोग करें। उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का प्रशिक्षण प्रदेश भर में कल से शुरू होगा, जो 7 जून तक चलेगा। 8 जून से BLO घर घर पहुंचेंगे और SIR के गणना प्रपत्र भरने का काम शुरू करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान BLO व उनसे ऊपर के अधिकारियों को SIR की सभी बारीकियां, अपील की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 29 मई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में गरज के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028

0: देश की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है शीर्षक गीत पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, हमारा आज का शीर्षक है सांस। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह की पहली सांस वो सिर्फ हवा नहीं होती, वो एक नया एहसास होता है। रात की खामोशी के बाद जब सुबह धीरे से आंखों को छूती है तो सांसें भी जैसे नया रास्ता ढूंढ लेती हैं। इस समय हर सांस के साथ एक शांति होती है, जैसे जिंदगी हमसे कह रही हो आराम से, अभी सुबह है। और शायद इसीलिए सुबह की सांसों में सबसे ज़्यादा सुकून होता है।

श्रोता हूँ, प्यार जब ज़िंदगी में आता है तो वह पहले सांसों को छूता है। किसी का नाम सोचते ही सांसों का ठहर जाना, किसी की याद आते ही सांसों का तेज़ हो जाना, ये सब बिना बताए बयां कर देता है कि दिल कहीं ना कहीं तो उलझ चुका है। श्रोताओं, प्यार बोलता नहीं लेकिन सांसें सब कुछ बयां कर देती हैं। कभी गहरी हो जाती हैं, कभी हल्की, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल का हाल होता है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, जब प्यार सच्चा होता है ना तो उसे याद रखने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो हर सांस के साथ याद आ ही जाता है। सुबह की ठंडी हवा में, चाय की पहली चुस्की में और आंख बंद करते ही प्यार जब सांसों में बस जाए तो ज़िंदगी बोझ नहीं लगती, वो एक खूबसूरत सा एहसास बन जाती है।

तो श्रोताओं, आज इस प्यारी सी सुबह में एक पल के लिए रुक जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और उस एहसास को याद कीजिए जो आपके बिना कहे ही आपकी हर सांस का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि जब प्यार सांसों में होना तो हर सुबह खास होती है, हर पल अपना सा लगता है। और इसी गहरे रोमांटिक एहसास के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं इस

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपने जीत, दबंग 2, और प्यार हो गया और सैनिक फिल्मों के गीत सुने। इसी गीत के साथ ही आज के सुरबहर कार्यक्रम से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना राजपूत फिल्म से। इस गीत को आवाजें दी थी महेंद्र कपूर, मनहर, हेमलता और साथियों ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा और विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया भारत फिल्म का गीत।

भारत फिल्म के इस गीत के बाद लीजिए पेश है सत्याग्रह फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है शफकत अमानत अली और अर्पिता चक्रवर्ती ने। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत सलीम सुलेमान का है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आइए आप सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा और साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया राहत फतेह अली खां का गाया सन ऑफ सरदार फिल्म का गीत।

इस वक्त आप सुन रहे हैं टॉयलेट, एक प्रेम कथा फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल। बोल गरिमा बहल के हैं और धुन बनाई है विक्की प्रसाद ने।

अभी आपने बधाई हो फिल्म का गीत आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कर की आवाज़ों में सुना। कुमार ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली का संगीत था। सैनिक भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं रेखा बिष्ट और दीवान कनवाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत से।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकसुर। इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ज्योति पांडे के स्वर में कुमावनी लोकगीत।

अभी आपने संवेदस्वर में एक गढ़वाली लोकगीत सुना और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक और संवेदस्वर में गाया लोकगीत। लोकगीत है कुमाऊनी।

अभी आपने संवेद स्वर में ये कुमाऊनी लोकगीत सुना। इसी के साथ लोक स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है।

ये त्योहारों की रंगीनियां अगर जिंदगी में न होती, तनावों से भरी सांसें उदासी संग होती, बाजारों में न रौनक होती, घरों में कहां सजावट होती, कहां इंतजार अपनों का होता, कहां घर जाने को एक एक दिन कैलेंडर से हटता। आज की मेरी पसंद में ढेर सी खुशियां लाए हैं ईद उल जुहा की। सभी को मुबारकबाद के साथ कबूल हो माधुरी कैड़ा।

इस घर का हर कोना सज जाए खुशियों से, अब के त्योहार में यही दुआ है खुदा से। कबूल हो दुआ दिल की, यही ख्वाहिश है खुदा से।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी पसंद। दोस्तों, आज वो पवित्र दिन है जब हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। उसी की याद दिलाता है हमें ये पर्व। खुदा की राह पर नेकी कर चलें, हुक्म को उसके सर आँखों पर ले चलें।

दोस्तों, हम सभी को इंतज़ार रहता है इन त्योहारों का। यह हमें एक नई ऊर्जा देकर जाते हैं, अपनों से मिलने जुलने का एक बहाना सा बन जाता है इन त्योहारों के ज़रिए, और रिश्तों में मजबूती भी आती है। कुछ गिले शिकवे हों तो भी वो इन त्योहारों में दूर हो जाते हैं। ये मौके हैं दोस्ती के, स्नेह के, प्रेम की मजबूती के, अपनों को मिलाने के, दिलों से सारे गिले शिकवे दूर करने के।

हर त्योहार में जीवन के रंग छिपे रहते हैं। प्यार, मोहब्बत, त्याग, समर्पण ये खूब सिखा जाते हैं। निरस्ता में रस घोल कर जीवन नया कर जाते हैं। आज की मेरी पसंद में बस इतना ही। अब दीजिए कार्यक्रम से माधुरी कैड़ा को इजाजत। अगली बार फिर एक नए विषय और नई सोच के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण।

0: यह गीत अल्लाह लोगों से ये बात हम बात करनू आज 28 मई यह दिन के मनोन उद्देश्य से महिलाओं और किशोरों में मासिक धर्म बटी जुड़ी सही जानकारी स्वच्छता और जागरूकता फैलो। 28 मई एक तारीख यह लीजिए चुनी गए किले की जो सामान्यतः महिलाओं का मासिक चक्र लगभग 28 दिनों में मानी जा और औसतन मासिक धर्म 5 दिनों तक रूम यानी 28-5 यही जागरूकता प्रतीक से। तो आज हमने आप लोग नल जी ये विषय पर एक बातचीत ला लिया। बातचीत का विषय से मासिक धर्म जागरूकता और हमारे दगल बात करनी श्रीमती ईला शाह जी। तो सुनो उन दगल करी गई ये बातचीत। मासिक धर्म जागरूकता आज हम यह विषय पर आप लोगों दगर बात करने जनिया जो महिलाओं के स्वास्थ्य सम्मान और आत्मविश्वास प्रति जुड़ी हुई है। आज समाज में यह विषय पर खुलबे बात करने में लोग शर्मानी यानी कि झिझक महसूस करने। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया से कि मैं बहुत है गलत धारणाएं सन खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यही विषय पर जागरूकता फैलने सराहनीय काम करने रिटायर्ड प्रोफेसर ईला शाह जी। आज हम उनसे जानू कि समाज में जागरूकता कैसी बढ़ाई जा सके और महिला और किशोरियों के कैसी एक सही जानकारी और सहयोग मिलन जाए। ईला शाह जी आप कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: यो विषय में अपुल निकी यो अवसर दिरा को यो महिला और किशोरी दुनिया नाली जी चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय छू ये चर्चा में अवसर भी दिन अपुल निकी कृतार्थ कर रखो ये लिखी में आभार व्यक्त करूँ।
1: लाजू मासिक धर्म जागरूकता दिवस मन में उद्देश्य कैसे और समाज में एक आवश्यकता किले महसूस करिए।
0: पहली तो मैं ये बतू कि जो मासिक धर्म छु एक स्वाभाविक अनिवार्य और प्राकृतिक प्रक्रिया छु। महत्वपूर्ण यो छु कि यो कोई ल किशोरी लिखी या महिलाओं न लिखी एक अद्वितीय छु यो हम की अखिल माँ बनने संकेत प्रदान करी। लेकिन हमार समाज में फैली कुरीति मिथक न दगड़ इनर घनिष्ठ संबंध हमेशा बटी रो और आई ले छू। ये कई कारण छू हम कह सकनू कि हमार समाज पितृ सत्तात्मक रही छू। वहाँ श्रेणी न आज्ञाकारिता व्याप्त रूढ़िवादिता वह हमार प्राचीन प्रचलित परंपरा श्रेणी न मौन संस्कृति और सामाजिक कारण जो छू यह लीजिए उत्तरदायित्व छु। अब हम जब यकी देखेगो कि जो यो प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया छू तो यह मैं संकोच या यकी अस्पृश्य या कि अपवित्र किला मान सकनू तो यह कह लीजिए श्रेणियन की यो बतू छी यो प्रतिष्ठा और सम्मानक एक विषय छू और यो ही कारण छू कि श्रेणी जो छुन या किशोरी जो छुन यह मैं उचित रूप पर चर्चा नहीं कर सकूं। और यही ध्यान में रखते हुए 28 मई 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस स्थापना करेंगे जैक उद्देश्य किशोरियों की यो बतून छी यो तुम्हार सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मानक विषय छू तुम यमे कोई ले प्रकारक सामाजिक प्रतिबंध की नहीं झेल सकना।
1: आप बहुत सुंदर तरीका समझा। वास्तव में जागरूकता उ माध्यम छे जय समाज में फैली झिझक और गलत धारणाओं के दूर करी जा सके। बहुत से महिलाएं और किशोरी मासिक धर्म बारे में खुलकर बात करने में शर्मानी। आपो अनुसार ये एक सबूत ठुली वजह क्या है सके?
0: ये एक सबूत ठुल वजह हमारे समाज में सामाजिकरण एक जो प्रक्रिया छी कि हम जस बच्चा की सिखूल उससे ही सिखोल और जस देखोल उसका रोल। तो यमे के छी परिवार में हम जस देखनु उससे ही हम सोचनू और जब हम सोचनू उससे ही हम करनू। हम उल्ला अपन इजू कब्बे खुल बेन बात नहीं कर ना हमारी जल कब्बे हम की क्यों विषय में शिक्षा दे। लेकिन फिर ले हम पढ़ाई के समय में जब हम नजदीक से गया यो तब हम की पत चलो कि यो एक रूढ़िवादिता छू और जब हम कोई ले समस्या बहुत नजदीक पहुंचनू तब हम बदलाव जो दिशा छू उनकी तय करनू। और यो ही मेर कारण छी कि मैं पहली अपनों में तो मैं यो ही महसूस करो जो मैं देखो लेकिन बाद में मैं सोचो कि यह तो कोई तथ्य ना थी जो तर्कहीन व्यवस्था छू तो यह लीजिए फिर मैं शोध कार्य करूँ शुरू करी और आज मैं यो विषय में काफी कार्य करूँ लग रही।
1: भल बात करें आप कई बार जानकारी कमी और सामाजिक दरअसल बहुत सारी चीज बनी खुलकर अपन बात न कर सकते। पहाड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म के लिए आज ले कई पुरानी मान्यताएं देखने मिलनी ये सोच में बदलाव के प्रयास हो जाए।
0: सबसे पहले हम की एक विश्वास उन्होंने मनी बटी जागृत करूँ छू की यो कोई अस्पृश्यता या अपवित्रता ना थी। यो मैं यह एक वैज्ञानिक कारण अगर हम बतूनू तो वो यो छी कि सैनियन की जब उनर यो मासिक धर्म समय में जो ब्लीडिंग ही उनकी ऊक लीजी उनकी आरामक नितांत आवश्यकता ही और 4 और 5 दिन उनकी आराम दी जाती। लेकिन यह पितृसत्ता कह लो या श्रेणी ने कमजोरी कह लियो ऊक मली बटी उकी थोप दे। और आज अगर हम समाज में देखनू तो हम यो पानू कि आप चूल्हे में तो नहीं जा सकना आप मंदिर में नहीं जा सकना आप भल कामन में नहीं जा सकना लेकिन अगर आपकी लकड़ लूं छू अगर आपकी जंगल व्यवस्था करूँ छू जानवर नक व्यवस्था करूँ छू तो आप वो लीजिए स्वतंत्र छा। तो यो एक मिथ्या छू यो गलत छू यो आराम करने लीजिए थी ना कि यो स्पर्श या अपवित्र मानने लीजिए।
1: समाज में बदलाव तबाल जब लोग इस विषय के सामान्य रूप पर स्वीकार करा और यह विषय पर खुल देर बात करा। जब किशोरियों के पहली बार मासिक धर्म हुई वो वक्त परिवार में विशेषकर मैं की भूमिका हूँ क्या?
0: पहली तो जब यो शुरू हूँ जब हम ये एक अध्ययन करनू तो हम यो पानू की एक शुरुआत 14 वर्ष बटी और एक अंत 50 वर्ष तक बीच में हूँ। लेकिन आज एक खान पान इस है वो कि यो शुरुआत कब हो और यह समाप्ति कब हो यह विषय में कोई जानकारी पर्याप्त तथ्य न आधार पर हम की प्राप्त नहीं हूँ। लेकिन फिर एक बात छू केवल मैं की नहीं मैं बाबन की या मैं खुल दिन चर्चा करूँ चैन की यो एक बहुत नाजुक समय हूँ तो मैं की यो भूमिका ही कि अगर मैं की पट चल गो कि यो मेरे चली एल पीरियड में छू रजस्वला में छू या रजोधर्म या की कुनी या मेनुस्टर साइकिल की कुनी कि या मैं छू तो उकी पूर्ण सहानुभूति दिनेर आवश्यकता छू उकी के चीजक आवश्यकता छू उकी बतलून पड़ोल हर चीज बतलून पड़ोल की उ टाइम पीरियड कसी हूँ वो कपड़ा कब बदली जा आप पैड कसी यूज कर ला। तो इसी खुलबेन जब तक हम चर्चा नहीं करूँ तब तक हमारे समाज में यो भ्रांति की यो अपवित्रता समाप्त नहीं है।

0: अबुल बहुत भल बात कर इलाजू कहीं कहीं पे हमून ऐसा देखो हमारे देश में अलग अलग जागरण में जब कि सूर्य के पहल बार मासिक धर्म हो तो वहाँ उत्सव मनाई जा।
1: हमारे देश में कई भागन में हुई है कि जब पहल बार जो किशोरी छू वो अगर मासिक धर्म गुनाओ की तो वो पूछ करी थी कि लेकिन मैंने पहले ने बता कि यो तो यो बात संकेत चुने कि यो हम की आगे जय दिन एक माँ दर्जा दिन काम करने वाल छू तो ये तो पूजा ही होन चैन है ना। तो ये लीजिए बच्चा न शिक्षा कहीं ले बाधित नहीं हो उनर दिमाग में यो डालू छू कि तुम कॉलेज में हुचा तुम बाजार में हुचा और उमे कोई ल संकोच कोई ल प्रकार संकोच नहीं करू छू।
0: बहुत है महत्वपूर्ण बात अपुल कहे वो वक़्त सही मार्गदर्शन और प्यार भरी व्यवहार हमर चेलियां या हमर नंतीनियों के आत्मविश्वास से बढ़ाल मासिक धर्म दौरान और महिलाओं के बातों के में विशेष ध्यान धरन चाहे।
1: जब ल हम जागरूकता कार्यक्रम करनु ग्रामीण क्षेत्र में तो आपकी जान बेन बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होल आई ले जो महिलाएं छुन वो कपड़ा न यूज करनी कोई बात नहीं कपड़ा में यूज करूँ कोई गलत ना थी वो कपड़ा को हूँ जो बिल्कुल सबसे ज्यादा गंदो हो जय कब है हम आपके चीजें लीजिए यूज नहीं करना तो और उसकी बार बार धोई जा बार बार सुखाई जा तो यो एक गंभीर समस्या श्रेणीनक स्वास्थ्य प्रति छू ये गंभीर बीमारी लगने जो आशंका छू पूछू और ये कतु कई लोग जो हुई श्रेणी ये कारण इतु घनिष्ठ बीमारी है ग्रसित है जानी की फिर उनर मौत ले। पहली हम परंपरा पे चलते जानू लेकिन जैसी जैसी हम पढ़वेन आगिन बढ़ून लगा लोगन की शोध करूँ लगा तो लागो कि यो एक बहुत ही गंभीर समस्या छू और जैसी से संबंध जो छू वो महिला और किशोरी ना स्वास्थ्य छू यो मेरे लीजिए एक चुनौतीपूर्ण विषय तबला बन गो जब ये मैं एक छात्र चोला मेरे पास और उल मेहो को कि मैम मैं यह विषय में रिसर्च करना चाहू की लकी ये वजह से मेरी इज्जत मृत्यु है छू तो यो एक गंभीर समस्या छू और ये श्रेणियों और किशोरियों की बचाई जा सकू हम अगर समाज में यो एक संदेश दे दिनों और ये मैं काम करूनु तो आगे और चल लाल और हमार एक शुद्ध वातावरण मिलने में समाज की योगदान दे सकू। पहली तो मैं लिखी चुनौती मानो लेकिन बाद में हम देखो तो यो ही मैं लिखी कुनी कि ना यो चेलीना विषय छू ना यो चालना विषय छू जुन उनकी मिला बेन श्रेणी नक ने मेहनत ने सब उनकी मिल बेन ये निदान करून पड़ोल कि लकी ये सिद्ध संबंध जो छू वो श्रेणी नक किशोरी न स्वास्थ्य पर छू और श्रेणी नक आदू आबादी हमार भारत में प्रतिनिधित्व करी उन अनदेखी हम नहीं कर सकना।
0: बहुत है भली जानकारी आप दे और यो बात जान बे मको बहुत है खुशी भय अचान हमार पुरुष जोशन उला यो विषय प्रति जागरूक होनी और अपन परिवार में चेल बिटू गए अपन योगदान देनी और मैं बहुत यश चलन के जानू जनून अपन केली पहल बार मासिक धर्म होने पर उदगर बहुत भली के बात करे और उसको समझा कि यह बात बड़ी घबरान नातन बस सिर्फ स्वच्छता ध्यान दिन से और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया से
1: यही मिसाल जो छू वो समाज के ध्यान छू हम और जदिन हम सब एक है दिन यह काम कर लू यो हमार लीजिए एक गौरव विषय छू तो हम के करूँ चैन की यो समाज में जैसे हम कुनू की चाल और चेली बराबर छू हम उनकी शिक्षा समान दिनिया हम उनकी खान पान बराबर दिनिया तो फिर यमे बराबर ही दिल में के तो अगर वो भाई छू या बहन छू अगर वो आपस में ले बात करनी ये मैं कोई बुराई न परिवार के मानू चैन न समाज के मानू चैन आज ये एक आवश्यकता छू हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए।
0: इलाजू आप बहुत भली बात कहे ग्रामीण क्षेत्र में आज ले कई महिलाएं स्वच्छता बटी जुड़ी साधनों और सही जानकारी बटी दूर छन यस में समाज परिवार और हमर की जिम्मेदारी है सके जैल उनके सहज महसूस
1: हम कुनू की हेल्थ इज वेल्थ या हम कुनू की पहला सुख निरोगी काया तो ये लीजिए पहली किशोरी छू चाहे सैनी छू उनकी घबराहट संकोच दबाव तनाव यो सब छोड़ों पड़ो और हमारी यो काम छू समाज यो काम छू कि हम की जागरूकता कार्यक्रम लगून पड़ा लेकिन जागरूकता कार्यक्रम लगूनेर मतलब यो नहतीन कि हम एक दिन गया और वहाँ जागरूकता कार्यक्रम कर बेन और वापस आ गया और फिर हम लोग सूद नहीं ली हमारे यो प्रयास होके कि हम जो गांव में जो विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम लगा वहाँ दोबारा कार्यक्रम जब हम लगून हम देख लू कि कतु परसेंट चली कतु परसेंट श्रेणी ये की समझ पाई और उन्होंने के योगदान दे अगर इसी इसी क्रम में द्वि मैस द्वि श्रेणी ले द्वि मैस द्वि श्रेणियन की अगर जागरूक करनी तो वो सार्थकता मनी जा तो इसी के बोध बोध से घड़ा भरता है कुनी वही यो हो कि जब हम द्वि चार लोग मिलवे ने केन बढ़ो वो बात फिर दोहर लोग बढ़ा तो निश्चित रूप से हमारे समाज में जागरूकता आ सकल दोहर बात की शिक्षा अनिवार्य छू हर जग शिक्षा अनिवार्य छू और ये लीजिए शिक्षा हमारे सोच की बदलने सशक्त माध्यम हूँ शिक्षा प्रति जागरूकता ले आवश्यक छू हम की स्कूल कॉलेजन में कदी ने चेलियन हूँ व्याख्यान करूँ छू यो विषय में तो

कधी ने छात्र बच्चा हुए करून पड़ल हमार सोचा दायरा विकसित हो चाहिए। परंपरा एकदम लानी नहीं जान, परंपरा की तोड़ी नहीं जान, लेकिन कहीं अगर जरूरत पड़ी कि कोई परंपरा या हम की नुकसान पहुंचने समस्या विषय बढ़ने तो निश्चित रूप से हम की ऊक विरोध करून पड़ोल। रूढ़िवादी परंपराओं की तोड़ने लीजिए आगी लोन पड़ोल, वो रूढ़िवादी परंपरा जो हमारे समाज में समस्या पैदा करने और जो श्रेणीनक मौन संस्कृति छू वो मौन संस्कृति है ले श्रेणीन की आगे बढ़ून पड़ोल। ये मैं तर्क करने आवश्यकता छू, ये मैं तथ्य ढूंढने आवश्यकता छू, उनर आत्मसम्मान कसी बढ़ाई जा सको यो विषय में इन सार चीजन में जो एक सोच छू उकी व्याप्त करने आवश्यकता छू। और ये लीजिए अगर हम एक जागरूकता कार्यक्रम में बदलाव कोई जटिल प्रक्रिया ना थी बदलाव लूना लीजिए हम की विचारनक बदलाव लून आवश्यकता और विचारनक बदलाव लीजिए हम की शिक्षा ग्रहण करने आवश्यकता छू। हम अपन कार्यक्रम में न केवल किशोरियन की न केवल सैनियन की लीनू बल्कि हम किशोरन की और मैसन की ललीनू हमारे दोहर पक्ष अगर जागरूक नहीं हो तो समाज जागरूक नहीं है सकू। यो लीजिए

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अर्पण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने

0: के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राजधानी देहरादून में कल ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि, झोंकेदार हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राज्य में चल रही पवित्र चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यात्रा शुरू हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है और अब तक लगभग 23,65,000 से अधिक श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने बताया कि चार धाम यात्रा पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम से प्रतिदिन यात्रा मार्गों और धामों में उमड़ रही भीड़ की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि धामों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को लगातार और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके।
1: धाम यात्राएं जो चल रही है, हम जैसे कि आप अवगत होंगे कि हमारे जो चार धाम थे उनकी ओपनिंग को अब महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है और साथ साथ हेमकुंड साहब के भी जो है कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो अभी तक कुल 23,65,000 के लगभग श्रद्धालुओं ने श्री धामों के दर्शन किए हैं, जो कि ये विगत वर्षों की भांति काफी अधिक संख्या है। और यात्रा का गढ़वाल पुलिस का और ये ध्येय है कि जो यात्रा जो हो वो सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए हम डे टू डे बेसिस पे हम इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भी तीर्थाकियों की जो संख्या है श्री धामों पर उसका हम आंकलन कर रहे हैं, तदनुसार वहाँ पे व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं।
0: देहरादून में कल ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और दून विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित हो रहा है। सम्मेलन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को मुख्य सचिव आनंद वर्धन संबोधित करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव और ब्रिक्स उपशेरपा शंभू एल हक्की कार्यक्रम में मुख्य संबोधन देंगे। पर्यावरण अनुसंधान और हिमालयी जलवायु अध्ययन के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान रखने वाला देहरादून इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रमुख विद्वान, नीति विशेषज्ञ और विचारक शामिल होंगे। इसमें हरित औद्योगिक परिवर्तन, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। नमाजियों ने ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। ईद अल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। प्रदेश में भी ईद पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और आयुर्वेदिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योग गुरु केवलानंद जोशी ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की प्राचीन पद्धति है। नियमित

0: योगाभ्यास से तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि योग मानसिक एकाग्रता बढ़ाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में भी सहायक है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर एंजल पटेल ने कहा कि आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं। नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि योग दिवस को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को, और 21 जून से पूर्व हम जनपद में पूर्व की भांति विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, विभिन्न योग सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से एक कार्यक्रम रेड क्रॉस भवन में किया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने योग सत्र का लाभ दिया। इसी प्रकार हम जनपद में अन्य कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित कराते रहेंगे और 21 जून को एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
0: मौसम विभाग ने आगामी 3 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं कल उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने संबंधित जिलों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की अपील की है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से तेजपाल सिंह।
0: पिथौरागढ़ जिले में शासन प्रशासन द्वारा शुरू की गई हेलो हेल्प हेल्पलाइन आम लोगों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। इसके माध्यम से आमजन अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्रतिदिन करीब 15 से 20 शिकायतें दर्ज हो रही हैं और अब तक 200 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 25 मामलों का पूर्ण निस्तारण किया जा चुका है, जबकि आधे से अधिक शिकायतें निस्तारण के अंतिम दौर में हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान करना है।
3: जो हेल्पलाइन यहाँ पर जारी की गई थी, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है और लगातार उसमें जो आम जनमानस की तरफ से शिकायतें उसमें दर्ज हो रही हैं। इसमें लगभग 25 शिकायतें ऐसी हैं जिनका निस्तारण होने के उपरांत शिकायतकर्ताओं ने अपनी संतुष्टि भी उसमें व्यक्त की है, क्योंकि शिकायतें उसमें लगातार आती जा रही हैं, तो पूरा प्रयास यह है कि उनका टाइमली डिस्पोजल किया जाए और संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए। अभी जो है 200 के करीब में शिकायतें दर्ज हो गई हैं और उसका निराकरण किया जा रहा है। निराकरण की स्टेज में भी काफ़ी सारी शिकायतें हैं और हम लगातार संवाद बनाए हुए हैं जो शिकायतकर्ता हैं। हम तो प्रयास यही है कि जल्द से जल्द अच्छा निस्तारण हो, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो और संबंधित शिकायतकर्ता को अवगत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राजधानी देहरादून में कल ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि, झोंकेदार हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चंदन दास के गाए निदा फाजली के कलाम से।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1294 कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जी एड रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
1: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है
1: जी। ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
2: जी।
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
2: जी।
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
2: जी। अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई।

0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
1: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी

0: चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
1: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
2: माँ, माँ, लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
2: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
1: हाँ।
2: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
3: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
3: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
2: अरे योगेंद्र।
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
2: हाँ माँ।
3: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
3: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
4: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
4: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
4: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया।

0: टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट

0: पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते।
1: चलो साथियों।
2: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।
1: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
2: भारत माता की जय।
3: भारत माता की जय।
1: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
0: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया।

0: kaya?
1: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1294 कड़ी। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सुरेश प्रसाद के गाए कुमाऊनी लोकगीत से।

अभी आपने माहेश्वरी बेस्ट के स्वर में ये कुमाऊनी लोकगीत सुना और आइए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं प्रहलाद सिंह मेहरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत से।

प्रहलाद सिंह मेहरा के गाए से घुमावनी लोकगीत के साथ उत्तराखंड के लोकगीतों का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के

0: दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

0: किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है।

0: साथ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर विजय सिंह मीणा की जानकारी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और मृदा उपचार।

किसान भाइयों और बहनों, आज बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक कृषि उत्पादन लेने के प्रयास हो रहे हैं। पिछले 40-50 वर्षों में हमारे देश में रासायनिक उर्वरकों का खेती में बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, जिसमें मुख्य पोषक तत्व नत्रजन, फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों के प्रयोग अधिक होने से खेत की मिट्टी में अन्य सहायक व सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी कमी हो गई है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से फसलों की प्रति इकाई उत्पादन कम होने के साथ ही भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी आ गई है। मुख्य पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तो पौधों को हवा व पानी से मिल जाते हैं, लेकिन अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। पौधों को नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनको प्रमुख या मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर को सहायक या द्वितीय पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद 8 अन्य पोषक तत्व जस्ता, लोहा, तांबा।

मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकिल, जिसकी पौधों को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु यह सूक्ष्म पोषक तत्व किसी भी रूप में मुख्य या गौण पोषक तत्वों से कम महत्वपूर्ण नहीं होते। आज मिट्टी में इन सहायक व सूक्ष्म तत्वों की भारी कमी को देखते हुए इन तत्वों को खेत में डालना आवश्यक हो जाता है, जिससे फसलों को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सके, साथ ही खेतों की मिट्टी भी स्वस्थ व उपजाऊ बनी रहे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण तथा मृदा उपचार के विषय में चर्चा करेंगे। मृदा में जलमग्न अवस्था में जस्ता एवं तांबा की उपलब्धता कम हो जाती है, जबकि लोहा और मैंगनीज की उपलब्धता बढ़ जाती है। अब हम क्रमवार सूक्ष्म पोषक तत्वों के कार्य, इनकी पौधों में कमी के लक्षण व उपचार के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जस्ता, जिंक, अधिक एंजाइम या सहायक भाग जो पराकरण निर्माण में सहायक, ये पौधों में वृद्धि नियामक ऑक्सीजन उपापचय हेतु आवश्यक है। इसके साथ जिंक बीज उत्पादन व पकाव की गति को तेज करता है। एक जस्ते की कमी के लक्षण मुक्त पौधों के ऊपर भाग से दूसरी तीसरी पूर्ण परिपक्व पत्तियों से आरंभ होते हैं। पत्तियों या इंटरनोड का छोटा होना तथा पौधे बौने और झाड़ीनुमा हो जाते हैं। नई पत्तियों के मध्य सिराओं के दोनों ओर रंगहीन पट्टिकाएँ बन जाती हैं। मक्का की फसल के प्रारंभ में पत्तियों को हल्के पीले रंग की धारियाँ बन जाती हैं और बाद में चौड़े सफ़ेद या पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। सिराओं का रंग लाल गुलाबी हो जाता है। ये लक्षण पत्तियों की मध्य सिरा और किनारों के बीच नज़र आते हैं, जो कि मुख्य पत्तियों के आधे भाग में ही सीमित रहते हैं। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिसमें कि 33% जिंक व 15% सल्फर बुआई के पूर्व खेत की जुताई के समय 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला दें, अथवा खड़ी फसल में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी व 2.5 ग्राम भुजा चूने का घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बुआई के समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला दें, अथवा 5 ग्राम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट व 2.5 ग्राम चूने को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। लोहे का मुख्य कार्यों में हरापन, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक, ये कई एंजाइम व यौगिक का महत्वपूर्ण भाग है। साथ में लोहा अन्य पोषक तत्वों के शोषण में भी सहायक होता है। पौधे की नई पत्तियों में सिराओं के मध्य पीलापन, अधिक कमी होने पर रंगहीन या हल्की सफ़ेदी दिखाई पड़ती है। अधिक कमी की दिशा में पूरी पत्तियां सिराओं और सिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है। कभी कभी हरा रंग पूरा उड़ जाता है। इसको दूर करने के उपायों में फेरस सल्फेट, जिसमें 19% लोहा और 10.5% सल्फर बुआई से पहले खेत में जुताई के समय 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिला दें, अथवा 4 ग्राम फेरस सल्फेट व 2 ग्राम भुजा चूना प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल में पर्णी छिड़काव करें। मैग्नीज के मुख्य कार्यों में हरापन, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक, यह वसा का निर्माण करने वाले एंजाइमों को सक्रिय करता है। गोभी वर्गीय सब्जियां, नींबू वर्गीय फल, कपास में प्रभावी, मटर, मूली तथा सेब पौधों में मैग्नीज तत्व की कमी से अधिक प्रभावित होते हैं। इनकी कमी में पौधे की नई पत्तियों के सिराओं के मध्य पीलापन अथवा भूरापन का होना, आधार के निकट का भाग दूसर रंग का हो जाता है जो धीरे धीरे पीला और बाद में पीला नारंगी रंग का हो जाता है। साथ ही मैग्नीज की कमी से अनाज वाली फसलों की पत्तियों पर सफ़ेद अथवा सलेटी धब्बे हो जाते हैं। दूर करने के उपायों में मैंगनीज सल्फेट, जिसमें 30.5% मैंगनीज 17% सल्फर होता है, उसकी 4 से 5 ग्राम मात्रा व 2 से 2.5 ग्राम मात्रा भुजा चूना का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। बुआई के पूर्व खेत में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला दें, अथवा 3 ग्राम मैंगनीज सल्फेट व 2.5 ग्राम भुजा चूने का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। बोरॉन तत्व के कार्यों में वनस्पतिक बढ़वार व प्रजनन में सहायक, यह पराकरण बनने व पराकरण में सहायक होता है। गोभी व खीरा वर्गीय सब्जियों में गुणवत्ता युक्त फल बनाने में सहायक, साथ ही बोरॉन तत्व दलहनी फसलों में सहजीवी जीवाणुओं को बनाने में सहायक होता है।
इसकी कमी के लक्षण से पौधों की नई पत्तियों में गुच्छे बनना व पौधों को सामान्यतः बौनापन, पत्तियां मोटी होकर मुड़ जाती हैं, पत्तियों में कड़ापन आ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और हरिमानता के धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। बोरोन की कमी से पौधों में तना व फल का फटना, गोभी व खीरा के मध्य खोखलापन, गोभी के फल बैंगनी रंग के हो जाते हैं, मुख तनों के ऊपर का भाग मर जाने के कारण फूल व फलों का कम लगना, बोरोन की कमी से जड़ों का विकास रुक जाता है, जड़ वाली फसलों में ब्राउन हॉट नामक की बीमारी हो जाती है जिसमें फल के सबसे मोटे हिस्से में गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, कभी कभी जड़ें मध्य से फट भी जाती हैं। दूर करने के उपायों में बोरोन सोडियम टेट्राबोरेट जिसमें 14.6% बोरोन होता है 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले खेत की जुताई के समय खेत में मिला दें, अथवा बोरेक्स जिसमें 10.5% बोरोन 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले जुताई के समय खेत में मिला दें, अथवा फसल में बोरोन की कमी के प्रारंभिक लक्षण दिखाई पड़ने पर बोरिक एसिड या बोरेक्स के 0.2% का पानी में घोल बनाकर फूल आने पर छिड़काव करें, फसलों की उपज में वृद्धि होती है। मोलिब्डेनम के तत्व के मुख्य कार्यों में दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण में सहायक, पराकरण निर्माण या पराकरण में इसकी विशेष भूमिका रहती है, साथ ही नाइट्रोजन उपयोग और नाइट्रोजन यौगीकरण में मदद करता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणुओं के लिए आवश्यकता होती है। पौधे की नई पत्तियों में सामान्य पीलापन, इसकी कमी के लक्षण जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण से काफ़ी मिलते जुलते हैं। मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों से प्रारंभ होकर अग्रसिरा की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों की सिराओं के मध्य भाग में चमकीले पीले, हरे अथवा नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं और पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं तथा प्याले के आकार की हो जाती है। पत्तियों के किनारे टेढ़े मेढ़े होकर ऊपर की ओर मुड़ तुड़ जाते हैं। अमोनियम मोलिब्डेनम जिसमें 52% मोलिब्डेनम होता है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर मिलाकर फसल के पड़ने छिड़काव करें, अथवा बुआई के समय 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें या छिड़क दें। तांबा मजबूत कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, यह लिग्निन के निर्माण में सहयोगी है, पौधों में विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करता है, साथ ही साथ पौधों की अनेक रोगों से रक्षा करता है। प्याज, तंबाकू, टमाटर, मक्का, नींबू वर्गीय फल आदि फसलों में इस तत्व की कमी से प्रभावित होते हैं। पौधे में 70% तांबा क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। तांबा लोहे के उपयोग में सहयोगी होता है, यह पौधे की वृद्धि विकास में सहायक रहता है तथा श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। पौधे का तना व नई शाखाओं का ऊपर से नीचे की ओर सूखना, डाईबैक, पौधे में बौनापन व नई पत्तियों का रंग हल्का हरा पीला होने से पौधे की पत्तियों पर भूरे धब्बे या धारे दिखाई देते हैं। गेहूँ की ऊपरी या सबसे नई पत्तियों पीली पड़ जाती है और पत्तियों का अग्रभाग मुड़ जाता है। पत्तियों के किनारे कट फट जाते हैं और तने की गांठों के बीच का भाग छोटा हो जाता है। नींबू के नए वृद्धिशील अंग मर जाते हैं। छाल व लकड़ी के बीच के मध्य गोंद की थैली सी बन जाती है और फलों से भूरे रंग का रिसाव या रस निकलता है। कॉपर सल्फेट जिसमें 24% तांबा व 12% सल्फर होता है भूमि उपचार हेतु 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़क दें अथवा भूमि में मिला दें। खड़ी फसल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट व 1 ग्राम भुजा चूना का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान मित्रों, मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, यूरिया का अधिक प्रयोग ना करें, फसलों में नत्रजन वाले खादों के साथ साथ फास्फेटिक व पोटासिक वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। केवल यूरिया के प्रयोग से अधिक पैदावार नहीं ली जा सकती है, अधिकांश जैविक खादों में सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, अतः खेती में अधिक से अधिक मात्रा में जैविक खादों का प्रयोग करें। किसान मित्रों, अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाकर अपने खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य प्राप्त करें। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा अभी तक लगभग 1500 किसानों को उनकी मिट्टी की जांच कर निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर उन्हें लाभान्वित किया है।
हमारे अन्य किसान

0: मित्र भी इस योजना का लाभ उठाकर अपनी मिट्टी की जांच करवा कर फसल का वांछित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और मृदा उपचार, अभी आपने डॉक्टर विजय सिंह मीणा की ये जानकारी सुनी। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। साय 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स और रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। साय 6:30 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, यही सभी समाचार हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। साय 5:05 पर हमारे शहस्वर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डूंगर राम, गंगाराम और साथियों का गाया कुमाऊनी लोकगीत। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे साय 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य भी है जरूरी। ग्रामीण श्रोताओं के लिए उत्तरायण कार्यक्रम लेकर आएंगे साय 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे जनजातीय कल्याण योजना विषय पर, साथ ही आपको शशि पाठक की वार्ता सुनवाएंगे बेजुबान की सेवा ही मानवता। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा साय 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज की बातें के अंतर्गत आपसे बातें होंगी पर्वतीय क्षेत्रों में स्वीट कॉर्न की उपयुक्त किस्में विषय पर, और साथ ही आपको भेंट वार्ता सुनवाएंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक उर्वरक की उपयोगिता, और भेंट करेंगे डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा से। रात्रि 9:30 पर हजरत अमीर खुसरो के कृतित्व पर केंद्रित संजय सिंह वर्मा का रूपक आपको सुनवाएंगे तूती ए हिंद, और मिले जुले गीतों और गजलों के कार्यक्रम सबरस का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं, आपसे कुछ ही देर बाद कार्यक्रम होगा एक ही फनकार। अपराह्न 3 बजे आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। साय 7:40 पर फिल्म संगीत। इंद्रधनुष कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9:15। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, हमारे आज के फनकार हैं हिंदी फिल्म संगीत को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन। जहां उन्होंने भव्य सिम्फनी और पश्चिमी संगीत तत्वों को एक मंच पर खूबसूरती से पेश किया, इसके अलावा 1949 की बरसात और 1956 की चोरी चोरी जैसी फिल्मों के लिए उनकी रचनाओं के रोमांटिक गीतों को ऊर्जावान नृत्य दृश्यों के साथ मिश्रित करने में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनके संगीतबद्ध किए चोरी चोरी फिल्म के गीत से। इस गीत को आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और गीत लिखा है शैलेंद्र ने।

श्रोताओं, शंकर जयकिशन की जोड़ी ने अभिनेता राज कपूर और गीतकार शैलेंद्र के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी बनाई और बॉलीवुड के इतिहास के कुछ सबसे यादगार गाने तैयार किए। उन्हीं में से एक है फिल्म श्री 420 का गीत, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी ने। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

शंकर जयकिशन की मधुर धुनों की रचनाओं में आवारा संगम जैसी कई फिल्में शामिल हैं जो अनेक पीढ़ियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती आ रही हैं। उनकी अनूठी शैली ने भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ियों में उनका नाम दर्ज किया। तो आइए अब सुनते हैं उनकी फिल्म संगम का गीत मुकेश का गाया। बोल हैं हसरत जयपुरी के।

मुकेश के गाए संगम फिल्म के इसी गीत के साथ एक ही फनकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हमारे आज के फनकार थे संगीतकार शंकर जयकिशन।

FM 16.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारतीय ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। लीजिए पेश कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

आज का सदाबहार फिल्मी गीत हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष माने जाने वाले निर्माता निर्देशक महबूब खान की फिल्मों के गीतों के नाम। 9 सितंबर 1907 को गुजरात में जन्मे महबूब खान की आज 28 मई पुण्यतिथि है, तो श्रद्धांजलि के रूप में आज का कार्यक्रम उन्हीं के नाम। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को माधुरी गैड़ा का सहिल अभिवादन। दोस्तों, उनकी फिल्में सामाजिक यथार्थवाद, भव्य दृश्यों और मजबूत महिला पात्रों के लिए जानी जाती थीं। ऐसी ही थीम में बनी उनकी फिल्म ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। फिल्म थी 1957 में आई मदर इंडिया।

मदर इंडिया फिल्म का गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। गीत शकील बदायूनी का था और संगीत नौशाद का। दोस्तों, महबूब खान का असली नाम रमजान खान था। वो बचपन से ही अभिनेता बनने का ख्वाब देखा करते थे और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो 16 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गए थे। शुरुआती संघर्ष के दिनों में उन्होंने घोड़ों के अस्तबल में काम किया और वे फिल्म सेट पर घोड़े सप्लाई किया करते थे। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में काम मिला, लेकिन सफलता उन्हें अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि फिल्म मेकर के रूप में बनी। तो उन्हीं की फिल्म अनोखी अदा का गीत अब पेश है उमा देवी की आवाज़ में। गीत शकील बदायूनी का और संगीत नौशाद का।

श्रोताओं, महबूब खान की फिल्मों की सफलता की एक मुख्य वजह है प्रख्यात संगीतकार नौशाद का संगीत भी रहा। उनके संगीत ने उन्हें पहली पंक्ति के फिल्मकारों में ला खड़ा किया। महबूब बेहतरीन निर्माता निर्देशक होने के साथ ही लाजवाब लेखक भी थे। उनकी फिल्में बड़े कलाकारों से पहले खुद उनके नाम से जानी जाती थी। उनकी फिल्म मदर इंडिया भारत की सरताज फिल्म कहलाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म आन का गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम। नौशाद के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

महबूब खान को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दर्शकों को लगभग 3 दशक तक क्लासिक फिल्मों का तोहफा दिया। भारतीय सिनेमा को आधुनिकतम तकनीकी से संवारने में अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का अहम किरदार रहा है। तो लीजिए पेश है अब ऐसी ही एक बेहतरीन फिल्म अमर का गीत, लता मंगेशकर का गाया, इंदिवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

दोस्तों, महबूब खान हॉलीवुड की फिल्मों से भी बहुत अधिक प्रभावित रहे और भारत में भी उच्च स्तर के चलचित्रों का निर्माण करने में जुटे रहे। मदर इंडिया के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्मफेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने मुंबई के बांद्रा में अपनी प्रोडक्शन कंपनी महबूब प्रोडक्शंस और एक फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज की स्थापना की। अब आपको सुनवाते हैं उनकी निर्देशित फिल्म अनमोल घड़ी का खूबसूरत गीत नूरजहां और सुरेंद्र की आवाजों में। तनवीर नकवी के लिखे बोलों की तर्ज बनाई है नौशाद ने।

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों

श्रोताओं, महबूब खान ने न सिर्फ फिल्में बनाई बल्कि कई ऐसे लोगों का परिचय इंडस्ट्री से करवाया जो बाद में स्टार बन गए, जिनमें अरुण कुमार आहूजा, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, नरगिस ने

और नादिरा के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं। आइए आप सुनते हैं उनकी चर्चित फिल्म अलीबाबा और 40 चोर का गीत आशा भोसले और साथियों का गाया। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

महबूब खान ने अपनी फिल्मों से दर्शकों को हमेशा नायाब सबक दिए, साथ ही उनकी फिल्में सदाबहार मनोरंजन का पर्याय बनी। सदा ही कुछ नया करने की जिद ने उन्हें फिल्म निर्माण से जुड़े हर पक्ष पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि उनकी मदर इंडिया, अंदाज, अनमोल घड़ी, अनोखी अदा, आन अमर जैसी फिल्मों में एक कसावट नजर आती है।

ये था आज का सदाबहार फिल्मी गीत निर्माता निर्देशक महबूब खान के नाम। अगली बार एक नए विषय नई सोच के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अभी दीजिए माधुरी को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न हो रही है। अपनी सायंकालीन सभा में 4:15 आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

FM 14.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब हमारी सायंकालीन सभा आरंभ हो रही है। हमारे सभी प्रसारण आकाशवाणी पिथौरागढ़ के साथ ही FM 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी रिले किए जा रहे हैं। अब हमारा कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नंदन वंदन अभिनंदन संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये मैं एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइन हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
0: जी होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये नल मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070 इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए जरूर।
2: एक

0: संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यूर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था, बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे, यहाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं।

0: तो आप देख सकते हैं
1: जी। तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी ये बताएं।
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं, एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज की डेट में बहुत आसान है
1: जी। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ।
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस
1: जी। तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है। बाकी ये जितने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इन सब की सिलेक्शन उस यूपीएससी के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं
1: जी। तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, ये खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: ये मैं एमबीए करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफ कोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात। तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि इस तरह का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के बहुत है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों, उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था
1: जी। निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ऐसे सुखद बात और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जो जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके एमबीए या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे,

0: और वो जीवन की यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था। आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था। तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद, वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक
0: अलग
1: अलग
0: तरह
1: अलग
0: की
1: अलग
0: आता
1: तरीके
0: है।
1: का निखर कर आता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा सीआरपीएफ में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
0: एडिशनल
1: अपने,
0: तैयारी जैसे बच्चे
1: हाँ,
0: अक्सर
1: बहुत
0: करते हैं कई
1: मशक्कत नहीं
0: कोर्सेज
1: करनी
0: ज्वाइन
1: पड़ी।
0: करने से
1: उसके
0: पहले।
1: बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
0: जी
1: जी
0: जी तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
1: जी जी जी
0: जी तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आपसे मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था। और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के

0: जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को एक अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
1: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
0: देखिए सीआरपीएफ में अब हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ और रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचों के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
0: भावना।
1: क्या बात है, तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के

0: मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
1: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
0: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई, तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी, और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा, और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया उन दिनों। मैं याद करता हूँ एक नक्सल अभियान में, ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था, और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
1: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
0: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में, तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं, तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है, तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: तो
0: एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन, तो आप उसके अलावा जो टाइम पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं, तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है
1: जी। एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस

0: में किया आपने आईआईएमसी से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
1: जी,
0: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
1: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, तो CRPF में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं CRPF का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
0: बात है 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
1: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो CRPF करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी CRPF करती थी, तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
0: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्य निष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था, तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे, तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो वो ना करें, तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं, तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की, तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है जैसे पहली बार सा है, क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं. आप एक जो आपके आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में. एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर. आप एक सोल्जर हैं. आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है. तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए. तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है. आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है. तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन करता, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है. तो मैं तो और मैं कह सकता हूं कि ये एक बड़ी यूनिक है. आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा.
0: शायद समझना
1: जी
0: मुश्किल है, और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत.
1: जी जी
0: बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी, वो कारवा आज तक कायम है. क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है. ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्य निष्ठ हैं. तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं, और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं.

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा यकीन मानिए अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशंस पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं सीआरपीएफ ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक, मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में

0: क्या वैल्यू रखते हैं, और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टेल्जिया वाली फीलिंग थी। एक मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टेल्जिया वाली फीलिंग थी। तो
0: हाँ जी
1: जी तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टेल्जिया वाली फीलिंग थी। और

0: आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी, एक मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीत माला लेकर आते थे, और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
1: बिल्कुल जी। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने, अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स से एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
0: निसंदेह।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज आपका, आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं

0: अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कुमावनी लोकगीत शैलस्वर कार्यक्रम के तहत। आज के कलाकार हैं डूंगर राम, गंगाराम और साथी।

डूंगर राम, गंगा राम और साथियों का गाया एक खुमाऊनी लोकगीत आपने अभी सुना। इसी के साथ सैलस्वर कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, हमारे आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद 5:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता साथी सुनते हैं 5:45 पर। 6:41 पर रोजाना की तरह भक्ति संगीत कार्यक्रम होगा। काश्तकार भाई किसानवाणी कार्यक्रम सुनेंगे 7:00। आज इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता प्रसारित होगी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक उर्वरक की उपयोगिता विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा से भेंट वार्ता। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8:00। रात्रि 9:30 पर रूपक सुनिएगा तूती ए हिंद, संजय सिंह वर्मा का लिखा हुआ। रात्रि 10:00 सुगम संगीत कार्यक्रम होगा और सभा के समापन में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। ये था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब एक नजर कल की दोनों सभाओं पर। श्रोताओं, हमारी कल की प्रातःकालीन सभा का आरंभ होगा 5:55 पर। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा विचार बिंदु कार्यक्रम, जिसमें विचार प्रसारित किया जाएगा अप दीपो भवे। आराधना कार्यक्रम के तहत भक्ति संगीत आप सुनते हैं 6:10 पर। सुबह 6:40 पर दिवस इतिहास आधारित आज की बात हम करते हैं। विविधा कार्यक्रम होता है 6:50 पर। 7:10 पर कल सुबह श्री रामचरित मानस गान पाठ का 108वां भाग प्रसारित किया जाएगा। सुबह 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे विनोद राम। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा होगा 7:50 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत निर्झर हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9:05 पर। 10:05 पर होगा कार्यक्रम सबरंग। 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम में सुनिएगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम आपको फिर सुनवाएंगे कल सुबह 11:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। मध्याह्न 12:00 मेरी पसंद कार्यक्रम में। अपराहन 2:45 पर फिल्म संगीत एक ही फनकार और सभा के समापन में 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रमों के तहत। कल सुबह 11:30 पर लोक सुर कार्यक्रम आप सुनेंगे। घर संसार कार्यक्रम महिलाएं सुनती हैं 12:30 पर। कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा आकाशवाणी से जुड़ी सुनहरी यादें। सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा कल दोपहर 1:15 पर। कलाकार होंगे जगजीत सिंह, शंकर महादेवन, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और आविता परवीन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1295वीं कड़ी प्रसारित होगी 1:30 पर। अपराहन 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत प्रसारित होंगे। काश्तकार भाई खेती की बातें सुनते हैं 2:30 पर। कल वार्ता प्रसारित की जाएगी धान की फसल का हानिकारक कीटों से बचाओ। वार्ताकार होंगे श्री JP गुप्ता।

विमला रावत, युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:15 पर। कल चर्चा का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता साथी सुनते हैं 5:45 पर। कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा 6:41 पर। ग्राम जगत कार्यक्रम आप सुनते हैं 7 बजे। कल इस कार्यक्रम में आज की बातें के तहत सुनिएगा प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:40 पर। फिल्म संगीत फिर सुनिएगा रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। और फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके अनुरोध पर के तहत रात्रि 9:30 पर। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8 बजे। कल रात्रि 10 बजे सुगम संगीत और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण हमारे आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा पाठी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई आगे निकलना चाहता है। किसी पर पढ़ाई का दबाव है, किसी पर नौकरी की चिंता, कोई रिश्तों में उलझा है तो कोई अकेलेपन से लड़ रहा है। हम अपने शरीर का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन मन की थकान को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब कभी हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमारा मन उदास होता है, बेचैनी बढ़ती है, नींद नहीं आती, तब हम बस खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। किसी को इस बारे में नहीं बताते और बस चुप हो जाते हैं। और यही चुप्पी धीरे धीरे मानसिक तनाव का रूप ले लेती है। दोस्तों, आज का युवा बाहर से तो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से कई बार टूट चुका होता है। सोशल मीडिया पर हर कोई व्यक्ति खुश दिखता है, सफल दिखता है, और उसी तुलना में युवा खुद को लगातार कमजोर समझने लगता है। लोग क्या कहेंगे, ये डर लोगों को अपनी बात खुलकर नहीं कहने देता। इतने एडवांस समय में भी आज लोग मेंटल प्रेशर या डिप्रेशन जैसी समस्या को पागलपन समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई भी पागलपन या कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि खुद के बारे में अवेयर होना है। दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत होना, खुद को समझना, तनाव को संभालना और जीवन में संतुलन बनाए रखना भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। अगर हमारा मन शांत है तो हम हर मुश्किल हालात में भी सही निर्णय ले सकते हैं। आज का युवा हसल कल्चर की दौड़ में दिन रात खुद को साबित करने में लगा है, जिसमें मानसिक शांति और सुकून कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आइए सुनाते हैं आपको हसल कल्चर और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हमारे युवा साथी नरेंद्र के साथ हुई ये भेंट वार्ता। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र आपका हमारे कार्यक्रम युवाणी में।
1: थैंक यू सो मच हिमानी जी।
0: तो सबसे पहले नरेंद्र, आप हमें और हमारे श्रोताओं को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
1: जी, सबसे पहले मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र है। मैं वैसे मूल रूप से पिथौरागढ़ का निवासी हूँ, पर अभी अल्मोड़ा में रहता हूँ।
0: जी नरेंद्र, बिल्कुल। तो नरेंद्र, जैसा कि आज के समय में हमने देखा है कि हर वक्त बिजी रहना और जो हसल कल्चर है वो युवाओं के बीच में एक ट्रेंड सा बन चुका है, आपको क्या लगता है कि जो हसल कल्चर है वो आपके लिए क्या है, और मतलब इसका चलन इतना कैसे बढ़ गया?
1: जी देखिए, मेरे हिसाब से हसल कल्चर का मतलब है हर समय काम, मेहनत और सफलता के पीछे भागते रहना। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अचीवमेंट दिखाता है, जिससे युवाओं को लगता है कि अगर वे कुछ लगातार बड़ा नहीं कर रहे तो वे पीछे रह जाएंगे। यही कारण है कि आज बिजी रहना एक तरह का स्टेटस बन गया है। लोग आराम करने से ज्यादा खुद को साबित करने में लगे हैं। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन जब इंसान खुद को मशीन बना ले तब मानसिक थकान बढ़ने लगती है। इसलिए जरूरी है कि सफलता के साथ मानसिक शांति को भी महत्व दिया जाए।
0: जी बिल्कुल सही बात है। आज सोशल मीडिया में हर कोई अपनी अचीवमेंट दिखाने के लिए और एक ऐसी दौड़ में भाग रहा है जिसमें वो कहीं नहीं पहुंचेगा। आप ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि खुद को प्रोडक्टिव दिखाने का दबाव जो है वो युवाओं की मानसिक शांति को छीन रहा है?
1: जी सच कहूँ तो काफी हद तक ऐसा ही हो रहा है। आज युवा सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि हर समय खुद को प्रोडक्टिव दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर एक दिन आराम कर ले तो उन्हें गिल्ट होने लगता है। कई लोग अपनी असली भावनाएं छुपाकर सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं। धीरे धीरे ये दबाव एंग्जायटी और स्ट्रेस में बदल जाता है। मानसिक शांति तब मिलती है जब इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करे और अपनी गति से आगे बढ़े। हर समय परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता है।
0: जी बिल्कुल सही बात है कि हर समय परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे उसे सही लगता है वो उस तरीके से काम करे, ना कि किसी बाहरी दबाव में आकर। नरेंद्र, जो ये सोशल मीडिया है ये हसल कल्चर को बढ़ावा देता है, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है इस पर?
1: देखिए हमारी आजकल सोशल मीडिया पर हमें हमेशा लोगों की सफलता दिखाई देती है, कोई नई नौकरी, कोई नया बिजनेस या कोई नया, ये देखकर कई युवाओं खुद पर दबाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे भी लगातार कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं तो वे पीछे रह जा रहे हैं। लेकिन यह सच है कि सोशल मीडिया सिर्फ लोगों की हाइलाइट्स दिखाता है, स्ट्रगल कभी नहीं। इसी वजह से लोग अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया को प्रेरणा की तरह देखें, कंपटीशन की तरफ बिल्कुल नहीं।
0: जी बिल्कुल सही बात है। साथ ही आप ये बताइए कि आराम करना और खुद को समय देना भी सफलता का हिस्सा होना चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह शरीर को आराम चाहिए उसी तरह दिमाग को भी शांति की जरूरत होती है। लगातार काम करने से इंसान फिजिकली ही नहीं मेंटली भी थक जाता है। कई बार रुकना, परिवार के साथ समय बिताना, संगीत सुनना या मनपसंद काम करना हमें अंदर से बेहतर महसूस कराता है। आराम करना आलस नहीं होता बल्कि खुद को दोबारा मजबूत बनाने का तरीका होता है। अगर मन शांत रहेगा तभी इंसान लंबे समय तक अच्छा काम कर पाएगा।
0: जी बिल्कुल सही बात है कि आराम करना आलस नहीं होता और कभी कभी रेस्ट लेना अच्छा है। जब हमारा मन शांत रहेगा तभी इंसान जो है वो अच्छे से और अधिक समय तक काम कर पाएगा। नरेंद्र, आजकल जो युवा है वो मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए क्या छोटे छोटे कदम उठा सकता है?
1: देखिए हिमानी, मुझे लगता है कि सबसे पहले युवाओं को खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना बंद कर देना चाहिए। हर किसी का सफर अलग होता है। रोज थोड़ी देर फोन और सोशल मीडिया से दूर रहना, अच्छी नींद लेना या अपने लोगों से खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपनी हॉबीज को समय देना और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भी मानसिक शांति देता है। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट का नाम नहीं है, सुकून भी उतना ही जरूरी होता है।
0: जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि अपने काम के अलावा हमें कुछ टाइम अपनी पसंदीदा काम, जो कि हमारी हॉबीज है और जो काम हमें खुशियाँ देते हैं, हमें उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। अंत में नरेंद्र, आप ये बताइए कि आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद भी एक युवा हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो युवा हैं वो इस हसल कल्चर के पीछे ना भागे और वो किस तरीके से मानसिक शांति भी बनाए रखे और साथ ही जिंदगी में आगे भी बढ़े?
1: जी मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी सिर्फ लगातार भागते रहने का नाम नहीं है। सपने पूरा करना जरूरी है लेकिन उस सफर में खुद की खुशी और मानसिक शांति को खो देना सही नहीं है। आज का युवा बहुत मेहनती है, बहुत सपने भी देखता है, लेकिन उसे ये भी समझना होगा कि हर समय खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी थोड़ा रुकना, मुस्कुराना या अपने लोगों के साथ समय बिताना और खुद को समझना भी जरूरी होता है। सफलता तभी अच्छी लगती है जब मन शांत हो। इसलिए जिंदगी को सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं, एक खूबसूरत सफर की तरह जीना चाहिए, जहाँ मेहनत भी हो और सुकून भी।
0: जी नरेंद्र, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से हमारा युवा जो है वो

0: प्रेरित होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कि आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी आपका।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के अंक रोजगार समाचार की ओर, जिसमें हम देंगे जानकारी इस सप्ताह निकले कुछ मुख्य रोजगारों की। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किए जा रहे हैं। आवेदन में कुल पद 451 है और आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर। रेलवे भर्ती बोर्ड रेल मंत्रालय में असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं। कुल पद 11,127 हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून है। विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ऑडिटर समेत विभिन्न पद भरे जाएंगे। कुल पदों की संख्या 12,256 है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक में ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन का मौका। कुल पद की संख्या 100 है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून 2026 है। अभी विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर। इसके साथ ही एडसेल इंडिया लिमिटेड में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर समेत कई अन्य पद रिक्त। कुल 869 पदों पर रिक्तियां भरी जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, इसके अलावा महिला अभ्यर्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर आवेदन कर सकती हैं। कुल पद 229 हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट upaganwadibharti.in पर। इसके अतिरिक्त पंजाब एंड सिंध बैंक में अप्रेंटिस की रिक्तियां भरी जाएंगी। कुल 635 पदों पर रिक्तियां भरी जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsindhbank.in पर। चलिए दोस्तों, रोजगार समाचार में बस इतना ही। कार्यक्रम में करते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं आपको एक प्यार भरा गीत।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की तरफ और डालते हैं नज़र आज यानी 28 मई को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था और सैयद वंश के शासन की नींव रखी थी। वर्ष 1959 में आज के दिन दो अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण की थी। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1961 में मानव अधिकारों के संरक्षण और दुनिया को इनके बारे में जागरूक करने के इरादे से लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। वर्ष 1977 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1967 में ब्रितानी नाविक सर फ्रांसिस 65 साल की उम्र में अकेले नाव में दुनिया का चक्कर लगाकर घर पहुंचे थे। आज के दिन वर्ष 1970 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का औपचारिक तौर पर विभाजन हुआ था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1979 में मार्था कवली डेविड भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला ईसाई पादरी बनी थी। आज के दिन वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना इस्तीफा दिया था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1996 में रूस चेचेनिया को अधिकतम स्वायत्तता देने पर सहमत हुआ था। आज के दिन वर्ष 1998 में पाकिस्तान ने 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए थे। आज के दिन वर्ष 2002 में नेपाल में फिर से आपातकाल लगा था। वर्ष 2008 में आज के दिन नेपाल में 240 साल से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ था। चलिए दोस्तों, अब एक नज़र आज हुए मुख्य व्यक्तियों के जन्म तथा निधन पर। आज के दिन वर्ष 1883 में हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1908 में जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म हुआ था। वर्ष 1923 में आज के दिन दक्षिण भारत के लोकप्रिय नामों में शुमार नंदमुरी तारक रामराव का जन्म हुआ था। दोस्तों, फिल्मों में अपार सफलता हासिल करने के बाद एनटीआर ने राजनीति का रुख किया और 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। चलिए दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही। अब सुनिए ये प्यार भरा गीत।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर, तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनणेर सगळ्या श्रोतांका आपू दगडी दिग्विजयी नमस्कार। श्रोताओ, आजकल हम देखना है मौसम में मुणि गर्मी बढ़ गए, रीढ़ी का मौसम है गर्म सकर उमेर भय। लेकिन हम आसपास लोगों तक बात करना है उनर कौन छू कि यो बारा गर्मी पिछड़ सालन है बेर सकर छू। यह एक मुख्य कारण यह छू कि यो बार ह्यून में उदिक द्यूनी हुआ है, ह्यून में द्यूपाण कम हो। दकड़ में जो हमारे आस पासक जगह छुन उन्हें आगल धधक नहीं, उनमें लगनी वाल आगल हमारे यहाँ तापमान में वृद्धि होने और वह हम घरबड़ी बिहार चाहना है जंगो जो साफ सुकल दिखी वहाँ धुरमनी उहर है जंगो साफ नहीं दिखे। तो हमारे मौसम बात है मैं अखिल कर बात करूँ। आज के कार्यक्रम में हम सब पहले आपू देखे विचार चर्चा करना लग रहा, हम बात करना लग रहा उन लोगों ने जो लोग अपू योजना बारहवीं मुणि कम जाननी या श्लोक में मालूम छू, जैसे जनजातीय समुदाय। यनर लीजिए सरकार तमाम योजना बढ़ रही इनको पढ़ने के लीजिए, रोजगार देने के लीजिए, यानी कि जीवन में जो हमारे मूलभूत आवश्यकता होनी उनको पूर्ण करने के लीजिए सरकार योजना बढ़ रही और ये योजना कई लोग लाभ लाभ उठाने लग रही। ऐसी दो चार योजना विषय में आज हम चर्चा करना लग रहा जो हमारे जनजाति लोग उन्होंने चीज बढ़ रहे। एकलव्य आवासीय विद्यालय यह सरकार एक बहुत बल पहल छू, यमी जनजाति क्षेत्र में रोने वाले विद्यार्थियों के उच्च गुणवत्ता शिक्षा गुण मतलब छू भल पढ़ाई लिखाई इंटर तरह दीजिए। यमी जनजाति क्षेत्रक जो नंतिन छुन वो लोग यहाँ शिक्षा व्यवस्था लाभ उठा सकनी, यमी मुफ्त और आवासीय शिक्षा दीजिए गुण मतलब छू, यमी जो लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई करनी उन्हें डबल टक के नहीं लगन और उन्हें खनक और ऋण इंतजाम ला सरकार तरफ करी जाएँ। यह के अलावा PMJAY योजना जो चल रहा है जो आयुष्मान भारत योजना एक अंग छू, यह में जनजातीय परिवार को 5 लाख तक है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करी जाएँ। गुण मतलब छो अगर कोई आदमी बीमार पड़ गए वीक लीजिए 5 लाख तक सरकारी खर्च में वीक इलाज होल। यह के अलावा वन धन योजना छू, यमी जो लघु वन उत्पाद जमे मोह गए महुआ है गए जड़ी बूटी है गए जो जनजाति इलाके में होनी उनर बिक्री लीजिए सरकार बाट मुहैया करी। गुणा मतलब सरकार उनकी उनर उत्पाद खरीद फिर उनको बाजार में बेची, यह क्योंकि आप लोग उनको घर पटी आप लोगों के उत्पाद होनी उनर खरीद है जी। यह के अलावा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, यह मैं जो जनजातीय छात्र छन उनको उच्च शिक्षा लीजिए या तले देश विदेश में मिले अगर वो पढ़ाई करनी चाहने वीक लीजिए। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना चल रहा है, यमी PhD के लीजिए लाए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा सकी। सरकार लगातार हर एक आदमी के लीजिए हर एक शख्स के लीजिए जो हमारे देश में निवास करूँ वीक लीजिए टाइम टाइम पर योजना चली। कई बार यहाँ की जो वीक लाभार्थी होनी उन लोगों को योजना बारहवीं पत्र नहीं हुन, तो हम लोगों को यह कोशिश करना चाहें जो योजना बारे में हम लोग जान लूँ अगर हमारे आसपास कोई पात्र लोग छन हमको लगूँ कि उन लोग यह योजना का लाभ उठा सकनी तो हम लोगों को उनको यह जानकारी देना चाहें दगड़ में उनर मदद लै करना चाहें। और यह बात का ध्यान रखना चाहें योजना पात्र आदिम तक पूजो यह हमारे नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहें। जब उन लोगों को योजना का लाभ मिलल तब सरकार जो आम लोगों के लिए काम करना चाहने वी उनको फायदा होल और जो लोग योजना के लाभार्थी छन उनके लिए अपो अधिकारक लीजिए जागरूक होने पड़ल। अगर कहें उनको कोई समस्या लगी तो वीक लीजिए सरकार तमाम मोबाइल नंबर दे रही उनमें आप लोग जानकारी ले सकता। अगर कहें आप लोग उनको फिर लें वीक समाधान नहीं मिलन तो सरकार तरफ में बहुत से शिकायत केंद्र बढ़े जा रही उनमें आप लोग अपो शिकायत दर्ज कर भीर समस्या का समाधान कर सकता। यह तो है आज की बातचीत और अब आपको सुनना बहुत सुंदर गीत कलाकार छन सुरेश प्रसाद जी, तो आओ सुनू यो मोहिल गीत।

श्रोताओं, अल्लाह पुलियो गीत सुना। कलाकार छी सुरेश प्रसाद जी। यो गीत बाप चिलिक जो निसास लगोनी पृष्ठ हूँ उकू परिभाषित करने गीत छी। ऐ जो हमार श्रोता गीत सुना हनल, कै को अपु मैपनक याद ए हुनल और कोई मैपु यह सुनल जन को अपु लाडिल चिलिक याद फिर ए हुनल। यो रिश्ते यशु चिलिक और इबोजुन चिली ब्याकर भी स्वराज जी और इज बाजू इकल जानी। चलो यह तो गीतक बातचीत है गया। अगिल आपको सुनना एक और कुमाऊने गीत, कलाकार छिन रमेश जोजू। तो आओ सुन सुनो यह चटकिल गीत।

श्रोताओं, अल्लाह पुल गीत सुना कलाकार ची रमेश जोशजू। पहले हम अपू लाडिल चिली बात करी भी बात चलो। लोकगीत में तमाम उपमा होनी या जो रचनाकार छू वीक रचना धर्म छू उ समाज को कसी देखूं भी हिसाबल उ अपू रचना लिखूं और उकु स्वर्दिनी हमार यहाँ लोक गायक जैल उ गीत हमको यश लगनी हमार आसपास का घटना छुन हमार आसपास का गीत छुन हमार गांव हमार घरों को देख भीर वो रचना करी जा रहा है। ये तो संवेदनाक हम बात करना लग रहा है। अखिल मानव संवेदनाक बहुत से पहले होनी उमड़ी अखिल आपको हम वार्ता सुन लग रहा है।

0: छू बेजुबान की सेवा मानवता। यह एक वार्ताकार छिन शशि पाठक जू। तो आओ सुनो यह वार्ता।
1: जो भूल नहीं सकते लेकिन दर्द महसूस करते हैं, जो शिकायत नहीं करते लेकिन चुपचाप अत्याचार सहते हैं, आज का विषय है पशुओं पर क्रूरता ना करें। पशु हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो बोल नहीं सकते लेकिन उन्हें भी दर्द, भूख और डर महसूस होता है, इसलिए हमें उनके साथ प्यार और दया का व्यवहार करना चाहिए। आज के समय में कई लोग पशुओं को मारते हैं, उन्हें भूखा छोड़ देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। यह बहुत गलत बात है। हर साल 21वीं सदी में भी हजारों इंसानों की लापरवाही से क्रूरता का शिकार होते हैं पशु। इसलिए हमें समझना चाहिए कि पशुओं के प्रति दया दिखाना ही सच्ची मानवता है। पशु हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशु कई तरह से हमारी मदद करते हैं। गांवों में गाय, बैल और बकरियां लोगों की रोजी रोटी का साधन है। हमें दूध, ऊन और कई जरूरी चीजें पशुओं से मिलती हैं। कुत्ते घर की रक्षा करते हैं और घोड़े पुराने समय से यात्रा में काम आते हैं। आज भी बहुत से लोग पशुपालन करके अपना घर चलाते हैं। कई लोगों के लिए पालतू जानवर परिवार का सदस्य जैसे होते हैं। वे अकेलेपन और तनाव को भी कम करते हैं। पशु के साथ होने वाली क्रूरता की बात करें तो आज सड़कों पर कई घायल और भूखे पशु दिखाई देते हैं। कुछ लोग उन्हें पत्थर मारते हैं या परेशान करते हैं। कई लोग पालतू जानवर पाल लेते हैं लेकिन बाद में उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। गायों के प्लास्टिक खाने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सड़क दुर्घटना में भी कई पशु घायल हो जाते हैं। कुछ लोग पैसे और लालच के लिए जानवरों का शिकार भी करते हैं। इससे कई वन्य जीवों की संख्या कम होती जा रही है। यह सब देखकर समझ आता है कि इंसानों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। हम इंसान खुद को धरती का सबसे समझदार जीव कहते हैं। मोबाइल बना लिया, रॉकेट बना लिए, चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज भी कुछ लोग सड़क पर बैठे एक बेजुबान जानवर को पत्थर मारकर मजा ढूंढते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं बी काइंड, लेकिन घर के बाहर बैठा कुत्ता दिख जाए तो तुरंत डंडा उठ जाता है। कुछ लोग कहते हैं जानवर गंदगी फैलाते हैं। अरे साहब, जरा सड़क पर पड़ा प्लास्टिक, बोतलें और कूड़ा भी देख लीजिए, वो किसी गाय ने नहीं फेंका। जानवर जंगल में रहते हैं पर असली हैवानियत कभी कभी इंसानों में दिखाई देती है। सोचने की बात है कि एक गाय जो हमें दूध देती है, एक बैल जो खेत जोतता है, एक कुत्ता जो रात भर जागकर घर की रखवाली करता है, जब वही बूढ़े हो जाते हैं तो कई लोग उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। कितनी अजीब बात है ना। जब तक फायदा मिला तो गौ माता, और जब बूढ़ी हो गई तो बोझ। पशुओं पर क्रूरता केवल अमानवीय ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाया गया। किसी पशु को मारना, भूखा रखना, चोट पहुंचाना या अनावश्यक पीड़ा देना अपराध माना जाता है। लेकिन केवल कानून से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब इंसान का दिल बदलेगा। आज लोग अपने पालतू कुत्तों के लिए हजारों के कपड़े खरीदते हैं, लेकिन सड़क पर घायल जानवर देख कर नजरें फेर लेते हैं। कुछ लोग कार में बैठ कर कहते हैं हटाओ इन जानवरों को सड़क से, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि सड़कें पहले उनकी थी, हमने ही उनके जंगल और जगहें छीन ली। भारत में पशुओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने का अधिनियम 1960 के अनुसार किसी भी पशु को बिना कारण चोट पहुंचाना अपराध है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1977 भी बनाया गया। इसके तहत दुर्बल जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी है। आज कई शहरों में पशु हेल्पलाइन और पशु अस्पताल भी बनाए गए हैं। कई सामाजिक संस्थाएं घायल और बेसहारा पशुओं की मदद कर रही है। लेकिन केवल कानून बनाना काफी नहीं। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक पशुओं पर अत्याचार पूरी तरह नहीं रुक सकता। उत्तराखंड में आवारा जानवरों की सुरक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास के लिए कई प्रमुख एनजीओ और कार्यकर्ता सक्रिय हैं, जैसे गौरी मौलिकी पीपल फॉर इन एनिमल्स पीएफए की संस्थापक हैं। उत्तराखंड में पशु संरक्षण का एक प्रमुख चेहरा है। इन्होंने केदारनाथ और अन्य तीर्थ यात्रा मार्गों पर काम करने वाले खच्चरों, घोड़ों की रक्षा और उनके शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक अभियान चलाए हैं। मेनका गांधी, भाजपा नेता और पशु अधिकार कार्य

0: कार्यकर्ता ये पूरे भारत के साथ साथ उत्तराखंड में भी आवारा पशुओं, कुत्तों, बिल्लियों के अधिकार व उनके टीकाकरण के लिए मुखर होकर आवाज उठाती हैं। प्रमुख गैर सरकारी संगठन जैसे पीपल फॉर एनिमल उत्तराखंड राज्य में जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क है। देहरादून के छबड़ा गांव में इसका हैप्पी होम नाम से एक अनूठा अभयारण्य है, जहां बिना पिंजरे के घोड़ों, बिल्लियों और अन्य घायल जानवरों को रखा जाता है। राहत एनिमल हॉस्पिटल एंड सेंचुरी देहरादून सहस्त्रधारा रोड में स्थित यह उत्तराखंड का पहला पशु अस्पताल है, जो सभी प्रकार के आवारा समुदाय के जानवरों, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, पक्षी और गाय को भर्ती करके इलाज करता है। द दून एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट देहरादून में आवारा कुत्तों और गायों के रेस्क्यू, इलाज और आश्रय के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्था है। हीलिंग साथी देहरादून में सड़क के बीमार, घायल और दिव्यांग जानवरों को रेस्क्यू करके करने वाली जानी मानी संस्था है। सरकारी संगठन उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड पशुपालन विभाग के अंतर्गत राज्य में पशु क्रूरता की रोकथाम और पशु कल्याण संगठनों के साथ समन्वय का कार्य करता है। उत्तराखंड के लोगों का प्रकृति और पशुओं से गहरा संबंध है। पहाड़ों में आज भी लोग गाय, बैल और बकरियों को परिवार की तरह रखते हैं। गांवों में पशुपालन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तराखंड के जंगलों में बाघ, हिरण, भालू, तेंदुआ और कई सुंदर पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन जंगल कम होने और बढ़ते प्रदूषण के कारण वन्य जीवों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जंगली जानवर भोजन की तलाश में गाँव की ओर आ जाते हैं। ऐसे समय में हमें उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति पशुओं से प्रेम करता है वह दिल से अच्छा माना जाता है। पशुओं के प्रति दया हमें इंसानियत सिखाती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर हम किसी भूखे पशु को खाना देते हैं या घायल पशु की मदद करते हैं तो इससे समाज में अच्छा संदेश जाता है। छोटे छोटे अच्छे काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण में पशुओं की भूमिका अहम है। पशु और पक्षी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ पौधों के परागण में मदद करती हैं, पक्षी बीज फैलाने का काम करते हैं। अगर पशु पक्षी की संख्या कम हो जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए पशु की रक्षा करना पर्यावरण की रक्षा करना है। पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें अपने आसपास के पशुओं के प्रति दयालु होना चाहिए। गर्मियों में पक्षियों और जानवरों के लिए पानी रखना चाहिए। घायल पशु देखने पर उनकी मदद करनी चाहिए। हमें प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कई पशुओं से खा लेते हैं। बच्चों को भी बचपन से पशुओं के प्रति प्रेम और दया की शिक्षा देनी चाहिए। हम कुछ छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं, जैसे किसी पशु को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, सड़क पर घायल जानवर देखेंगे तो उनकी मदद करेंगे, पक्षियों के लिए पानी रखेंगे, बच्चों को पशुओं से प्रेम करना सिखाएंगे और सबसे जरूरी, किसी बेजुबान की पीड़ा देखकर चुप नहीं रहेंगे। इंसान वही है जिसके दिल में हर जीव के लिए दया हो। पशु बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखें, उनका दर्द और उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। क्रूरता नहीं करुणा फैलाएं, नफरत नहीं दया बांटें। अंत में यही कहा जा सकता है कि पशु भी इस धरती के जीव हैं और उन्हें भी जीने का अधिकार है। उनके साथ क्रूरता करना गलत है। हमें हमेशा पशुओं के साथ प्यार और दया का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम व्यक्ति थोड़ा सा भी संवेदनशील बन जाएं तो दुनिया पशुओं और इंसानों दोनों के लिए बेहतर बन सकती है। पशुओं के प्रति दया ही सच्ची मानवता है।
1: श्रोताओ अलपुण्य वार्ता सुनी। विषय छी बेजवान की सेवा ही मानवता, और ये वार्ताकार छी शशि पाठक जी। तो यनुर जदु बात कही उमें अधिकांश या हम कहें 100% बात को हर कोई सही मानू, पर उकू अपु जीवन में हम कसी लागू करूं या ठुल सवाल छू। और हम ये तो विश्वास करनू जद लोगों ने यह वार्ता सुन होने ली उनर लीजिए यह वार्ता कामगार होली, और सबसे ज़्यादा यह फायद हो ऊ बेजुबान जानवरन के जो हमारे आस पास छन। जनर एक संसार छू और उनर संसार में कई बार हम लोग हस्तक्षेप करनू। तो यह सुंदर वार्ता अल्लाह पुर सुनी, और अब सुन लूँ यह ज़रूरी संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता, हम जिस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है गया, तो यानी हम लोगों को दो चार बात ना ध्यान धरना चाहिए, ख़ासतौर पर अपन नंदिना हमको विशेष ख्याल धरना चाहिए। और जो हम गोपन लोग निवास करने, तो जो हमारे जानवर छन उनर सुरक्षा लीजिए, हमको सजग रहना पड़ो। आजकल नंदिनी स्कूल जाना ही तो यह बात ध्यान धरो, जब वो स्कूल में जाना ही तो दगड़ में उनको पानी जरूर है जरूर दिया। गर्मी लगातार बढ़ना है, जदू हम पानी पियल उदू हमारे लीजिए लाभदायक होल। दगड़ में जो नन्नातिन छन जन स्कूल मुड़े दूर छो उनर दगा उनर घरवा कोई उनको छोड़ जानी, तो छात ले जान बहुत ज़रूरी छो, क्योंकि घाम यदु तेज घाम छो वील जो नन्नातिन छन उन लोगों कई बार घामा कारण त्वचा समस्या उनको परेशान करें, तो यह बात आपको ध्यान धरना चाहें। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात कर लूँ, जो हमारे गोरबात छन तो उनको टाइम पर बिहार बादरण भितेर बादरण यो हमको ध्यान धारण चाहे। दिनमान भर अगर गोरबाज घाम में रोला तो उलह बीमार पड़ सकनी, तो जहाँ तेज घाम चो कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग उनको अपो गोट बात दियूँ। और कई बार हमारे गोपन हम लोग यो मुनी गलती कर दिनों, हम कुनो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है रहे तो हम गोठक द्वार महाव खोल देनू, तो यह बात हमको ध्यान धारण चाहें। आजकल जगहों में आग लगने लग रहा हो, तो हम लोगों को जब जानवर गोठ बांधन तो वीक द्वार हमको भली का बंद कर देना चाहिए। और जो खिड़की छन उनके लिए भली का चाचता लेनी चाहिए, मजबूत खिड़की होनी चाहिए, उम्मीद कोई जानवर प्रवेश करने की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गर्मी का मौसम छो हम देखने लग रहा है तमाम जगहों में आग लग रहा हो, वहाँ बटी कोई ठुल हिंसक जानवर अभेर हमारे लिए परेशानी कर सकूँ, तो यह बात अगर ध्यान धर ला, तो कोई लोग मौसम हो मौसम देखा हम लोग उनको सावधानी बरतना चाहिए। और अब फिर आप लोग उनको गीत सुनना, गढ़वल गीत छू और कलाकार चंद्र सिंह राही जी, तो सुन लूँ यह गढ़वल गीत।

अरे डांड मारो थार थारू थार की शिकारू दिखेण मा लाल सचगार अर काका नीच घर खंदुर बिली गेजार काका नीच घर खंदुर बिली गेजार जैती बार मा कुंती का पुत्र का छा बल मुंगरो की मार अर तो सुवा का बाना तक पुड़ गए चिमटों की मार डांड मारो थार थारू थार की शिकारू दिखेण मा लाल सचगारू खान मा मजेदारू हर कैथे दीदी नगद कैथे दीदी उधार रान करी मैं निर्मोही नीचो तेरी सिचार मैं बल हो तेरी

श्रोताओं, अलना पुल गढ़वाल गीत सुना। कलाकार छी चंद्र सिंह राहेजू और अब समूह स्वर में सुनू यो कुमाऊनी लोकगीत।

यही जोर देखा है हमारा आजक उत्तरायण कार्यक्रम लेकर संपन्न हो। भूलू आप लोग देखा है फिर भेंट फल उम्मी फल रोजा का चारी दुचार बातचीत दगड़ में गीत। अहराज्ञा दियो नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा के
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते।
0: कृपया प्रतीक्षा करें।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001।

0: 4-2-4-2
1: ओ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 लो अभी फोन लगाता हूँ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 पर।
2: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ, आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया, कहा सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मासिक धर्म को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गढ़वाल मंडल के अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल केवल एक पुस्तिका का विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है।
4: भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया है और निर्धारित लक्ष्य का लगभग 95% कार्य भी पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्र पति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्र की असाधारण सेवा, अटूट अनुशासन और समर्पण के लिए देश के पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
5: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
6: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी

0: बड़ी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई और 6 व 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मासिक धर्म को लेकर समाज में कई भ्रांतियां व्याप्त हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। वे आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित किशोरियों और महिलाओं के जागरूकता तथा प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है और इसे लेकर समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी है। श्रीमती आर्या ने किशोरियों के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार तथा मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
2: बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियाँ हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है।
1: इस अवसर पर उन्होंने किशोरियों और बालिकाओं को मासिक धर्म स्वच्छता किट भी वितरित की। गौरतलब है कि देशभर के हजारों जन औषधि केंद्रों पर मात्र 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज असम भ्रमण के दौरान गुवाहाटी स्थित लोकभवन में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यपालों के बीच समसामयिक विषयों, सुशासन, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। भ्रमण के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोकभवन असम की भव्यता, आधुनिक संरचना तथा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को समाहित करती इसकी वास्तुकला की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की विविधता, विकास और सांस्कृतिक विरासत सदैव प्रेरणादायी रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वे राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श तथा मंथन करेंगे। श्री नबीन मंत्रियों के साथ अलग से बैठक भी करेंगे जिसमें सरकार के कामकाज, जनसंपर्क और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। वे 4 जून को अल्मोड़ा में एक जनसभा और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 5 जून को वे देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेस के आनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी। राजधानी देहरादून में कल ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह का विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रमुख विद्वान, नीति विशेषज्ञ, विचारक शामिल होंगे। इसमें हरित औद्योगिक परिवर्तन, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने आगामी 3 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 3,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं चलने और अतिवृष्टि की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 30 मई से 1 जून तक खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में चार धाम श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने संस्थान को बिजली, पानी और सड़क सहित सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। बैठक में मंत्री ने विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर विभाग के अंतर्गत अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति और संबद्धता पर कार्यरत सभी कार्मिकों को मूल पदों पर वापस भेजने के भी निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। कहा, सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मासिक धर्म को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गढ़वाल मंडल के अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। पहली प्रस्तुति में शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भक्ति वंदन।

0: चित्रा सिंह के स्वर में ये भक्ति संगीत अभी आप सुन रहे थे, इसके साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 होने को हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी सरिता भट्ट। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका को विमोचन करद बोली, सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों का समाधान को आश्वासन दे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन मासिक धर्म थे लेके समाज में व्याप्त भ्रांतियों थे दूर करने की आवश्यकता पर बल दे। और मौसम विभाग ने अगला 24 घंटों का दौरान गढ़वाल मंडल का अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि को पूर्वानुमान जारी करे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका को विमोचन करी। ये अवसर पर उन बोली कि यह पहल केवल एक पुस्तिका को विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड का उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य का निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प को प्रतीक च।
2: भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
1: मुख्यमंत्री बोली कि वर्तमान बगत में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुकी च। उन बताए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का तहत राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों को लक्ष्य बगत से पहले पूर करियाली और निर्धारित लक्ष्य को लगभग 95% काम भी पूर करियाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस थे आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करी। ये पुरस्कार थे प्राप्त करने वो सिक्किम देश को 15वां राज्य और पूर्वोत्तर को 3रा राज्य बन गया। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्र की असाधारण सेवा, अटूट अनुशासन और समर्पण खुणे देश का पुलिस बल थे दे जान वो सर्वोच्च सम्मान च। समारोह थे संबोधित कर राष्ट्रपति ने पुलिस बल थे अधिक नागरिक केंद्रित बनने को आग्रह करी। उन पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों का प्रति संवेदनशील रहने को आग्रह करी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से आश्वस्त करी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू करे गया नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन च। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों का दगड़ी बैठक का बाद संवाददाताओं से बातचीत में बोली कि उन विद्यार्थियों थे आश्वासन दिया कि चलनी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया का दौरान सभी शिकायतों को समाधान करे जालू।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के संशोधित तिथियों और प्रवेश पत्र जारी करिए। NTA का अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई और 6 व 7 जून को आयोजित करे जाले। NTA ने बताया कि

0: रविवार को परीक्षा देने वाला उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र जारी करिए ली और यूं थे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड करे जा सकें। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाला शीर्ष उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र जल्द ही जारी करे जाला।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन बोली की मासिक धर्म थे लेके समाज में कई भ्रांतियां व्याप्त छिन जो थे दूर करना आवश्यक छ। वो आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस का अवसर पर देहरादून में आयोजित किशोरियों और महिलाओं की जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर थे संबोधित करनी छ। उन बोली कि यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया छ और ये थे लेकिन समाज

0: खबरों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन बोली की मासिक धर्म थे लेके समाज में कई भ्रांतियां व्याप्त छिन जो थे दूर करना आवश्यक छ। वो आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस का अवसर पर देहरादून में आयोजित किशोरियों और महिलाओं की जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर थे संबोधित करनी छ। उन बोली की है एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया छ और ये थे लेके समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी छ। श्रीमती आर्यन किशोरियों खुणे संतुलित और पौष्टिक आहार तथा मासिक धर्म का दौरान स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दे।
2: बालिकाएं हैं हमारी जो युवतियां हैं जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने हर महिला ने हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है पूरी तरीके से वैज्ञानिक है बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है।
1: ये अवसर पर उन किशोरियों और बालिकाओं थे मासिक धर्म स्वच्छता किट भी वितरित करीन। गौरतलब छ कि देश भर का हजारों जन औषधि केंद्रों पर मात्र एक रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध करे जाने। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज असम भ्रमण का दौरान गुवाहाटी स्थित लोक भवन में असम का राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करी। ये दौरान द्वि राज्यपालों का बीच समसामयिक विषयों सुशासन सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय हित से जुड़िया विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुए। भ्रमण का दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक भवन असम की भव्यता आधुनिक संरचना तथा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत थे समाहित कर दी एक ही वास्तुकला की सराहना करी। उन बोली की पूर्वोत्तर भारत की विविधता विकास और सांस्कृतिक विरासत सदैव प्रेरणादायी रहे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। जौलीग्रांट हवाई अड्डा पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको भव्य स्वागत करी। वो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन से जुड़िया अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी का वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का दगड़ी विचार विमर्श तथा मंथन करला। श्री नवीन मंत्रियों का दगड़ी अलग से बैठक भी करला जैमा सरकार का कामकाज जनसंपर्क और आगामी रणनीति पर चर्चा करे जाली। उना कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय हुए। वो 4 जून को अल्मोड़ा में एक जनसभा और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन थे संबोधित कराला। यहाँ का बाद 5 जून को वो देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्यों विधायकों पूर्व विधायकों और कांग्रेस का आनुषंगिक संगठनों का प्रतिनिधियों का दगड़ी बैठक करला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी का दौरों की जानकारी दे। राजधानी देहरादून में भोल ब्रिक्स अकादमिक मध्यवर्ती सम्मेलन आयोजित करे जालो। सम्मेलन की थीम लचीलापन नवाचार सहयोग और सतत विकास का निर्माण पर केंद्रित राली। सम्मेलन का उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह को विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित करे जालो। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों का प्रमुख विद्वानों नीति विशेषज्ञ और विचारक शामिल होला। यामा हरित औद्योगिक परिवर्तन स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जना विषयों पर विशेष चर्चा करे जाली। मौसम विभाग ने 3 जून तक राज्य का विभिन्न जिलों में बरखा को पूर्वानुमान जारी करूच। विभाग का अनुसार अगला 2 दिन राज्य का अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बरखा और 3,800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाला जगहों पर बर्फबारी को अनुमान च। दगड़ा ही अगला 24 घंटों का दौरान उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर टिहरी देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में कखी कखी चाल चमकण झोंकेदार बथों चलण और अतिवृष्टि की संभावना बनी च। वखी मौसम विभाग ने 30 मई से 1 जून तक खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी करूँ च। इन अवधि में 4 धाम श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचण और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील करी च।

0: अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका को विमोचन कर बोली सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों का समाधान को आश्वासन दे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन मासिक धर्म थे लेके समाज में व्याप्त भ्रांतियों थे दूर करने की आवश्यकता पर बल दे। और मौसम विभाग ने अगला 24 घंटों का दौरान गढ़वाल मंडल का अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि का पूर्वानुमान जारी करी। एकादगढ़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हो। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं, काश्तकार भाई अब सुने कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के मैं कृष्ण सिंह लटवालक नमस्कार। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का प्रायोजक छिन्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई करी जाने लग रहे, कहीं कहीं तो शुरू है और कई कई क्षेत्रों में खेतन के बाढ़ लग रही, तो कुछ वक्त में जो बुआई छो वो शुरुआत है जन। तो इसमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम मक्का उत्पादन करूं, यानी कि एक मक्का में एक हम बात करूं स्वीट कॉर्न जगह हम मीठ मक्का लगूँ, तो अगर हम यह उत्पादन अपन पर्वतीय क्षेत्र में करूं तो हमारे जो किसान भाई बड़े छे वो ज़्यादा लाभ कमा सकने, क्योंकि कि वर्तमान वक्त में स्वीट कॉर्न यानी कि ये मीठा मक्का जो है यह बहुत मांग बाजार में रोन लग रहे, और यह के दगरे हमारे जो पशुधन छ वह एक चारक लीजिए एक जो पत्र छिन डंठल छिन उले सब जो छे काम ए जानी। तो इसमें हमार जो उत्तराखंड का अगर हम बात करूं तो यह हम यह खेत कर सकूं। सदा स्वीट कॉर्न एक स्वादिष्ट पौष्टिक आहार छे और पत्तों में लिपटी रूण कारण कीटनाशक रसायनों प्रभाव ले लगभग लगभग मुक्त हों। इमें फास्फोरसक प्रचुर मात्रा उपलब्ध हैं, यह एक अलावा इमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन कैल्शियम लोहा और विटामिन ले में पाई जा। स्वीट कॉर्नक फसल के बेबी कॉर्न और मीठ मक्का नामल ले जानी चा। जो क्षेत्र में सिंचाई उचित व्यवस्था छे वहाँ पर मई जूनक बखत में स्वीट कॉर्नक खेती के लिए उचित समय छे, और स्वीट कॉर्नक खेत कर भी हमारे जो किसान भाई मिले छे वो ज़्यादा लाभ ले कमा सकनी। स्वतः अगर हम स्वीट कॉर्नक उत्पादन तकनीक की बात करूँ तो कुछ विभिन्नता के अलावा सामान्य मक्का जो हम अपने घर में लगूँ ये वैक तरीक छे, और अगर हम विभिन्नताओं की बात करूँ तो एक तो यह कि एक जो अगेती परिपक्वता छे यानी कि यह जो फसल छे वो जल्द तैयार होने वाली छे, और पौधों की अधिक संख्या हम लगा सकूँ। अगर हम घनत्व की बात करूँ तो हम नज़दीक नज़दीक में एक उग सकूँ, और यह जो डंड होनी उनके तोड़ना आसान हो, और भुट्टू में सिल्क उड़ने के बाद एक बेले भी 3 दिन के अंदर हम भुट्टा तुड़ाई ले कर सकूँ। और बेबी कॉर्न ज़्यादा उपज ढेड़क लीजिए हमन के जो एक उन्नत किस्म छन उन्हें चयन हमन के करण चयन। और अगर हम बुआई के बखत बात करूँ तो खास तौर पर हम उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी के महीने के छोड़ बेर उसे तो साल भर में हम बेबी कॉर्न बुआई करी जा सकनों, लेकिन हमारे उत्तरी भारत में और खास तौर पर

पर्वतीय क्षेत्र में मार्च बेर मई तक जो छे बेबी कॉर्नक मांग ज्यादा ही, तो ये एक लीजिए हमन के जनवरी में हड़क अंतिम सप्ताह में हमन के एक बुआई करण जो उपयुक्त हो। और हमारे दक्षिण भारत तक अगर हम बात करूँ तो उस क्षेत्रों में एक जो बुआई छे वो लगभग लगभग साल भर जो छे करी जाए। श्रोताओं एक जो बुआई छो वो सीख तो आसान छे, लेकिन मेड़ और क्यारियों में अगर हम एक बुआई करूँ और खासतौर पर दक्षिणी भाग की तरफ भी एक बुआई कर लो तो हम इनके में ज़्यादा फैज जो है मिल सकूँ। सिद्ध रोने वाले पौधों के लिए मेड़ और पौध पौधक दूरी हम इनके 60 मीटर वाली बेर 15 साठ मीटर गुणा 15 हम इनके एक रखन चैन। और जो फैलने वाले पौधों अगर हम इनके पत्ते हों तो 60x20 हम इनके एक दूरी जो है वो रखन चैन। किस्म और प्रजातिक टेस्टक वजनक अनुसार लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ हम बीज एक प्रयोग कर सकूँ। और यह कहते हैं बुआई है मेरे पहली प्रत्येक किलो बीज में हम कुछ अगर उनको उपचार अगर हम करूँ तो जैसे कि जो फफूंद जनित रोग होनी जड़ गलन रोग होनी उनका हम बच सकूँ, रासायनिक उपचार हम कर सकूँ। अगर आपके पास कोई जैविक उपचार छू तो आप वो बीज शोधन लीजिए उपले कर सकता। उर्वरक लीजिए हम उनके जैविक उर्वरकों का प्रयोग करन चाहिए, क्योंकि रासायनिक को प्रयोग हमारे उर्वरा शक्ति के कम करण लग रहे माटे, तो अगर हम है सकूँ तो बहुत सीमित मात्रा में यानी कि संतुलित मात्रा में हम उनके उर्वरकों का प्रयोग करन चाहिए। बुआई के तुरंत बाद इमें अंकुरण ऐजा तो इसमें खरपतवार नाशी हम उनके में हम मिल सकूँ, या फिर जो खरपतवार प्रबंधन हूँ हम उनके ओके करण चैन। अगर है सको तो उसे हम मल्चिंग मेले प्रयोग ले मेले कर सकूँ, जब तक एक नान पौध होनी तो वक़्त में हम मल्चिंग जो है कारगर है सके। यह के दगड़े मक्का फसल में मौसम और फसलक अवस्था और मिट्टी के अनुसार हम उनके सिंचाई के लिए हम उनके बखत बखत पर करण चैन। और पूरा अवधि के दौरान हम उनके 3 बार एक जो है सिंचाई भल तरीके हम उनके करण चैन। और तना छेदक और जो कीट होनी वो एक लीजिए नुकसानदेह होनी, तो 5 जमनक बाद हम उनके कीटों का जो प्रबंधन छ उला हम उनके करण चैन। तो अगर हम कुछ बातों का अगर ध्यान रख लो तो हम भल आय जो छो स्वीट कॉर्न में कमा सकूँ। और हमारे अलमार स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अलय स्वीट कॉर्न एक नई संकर किस्म वीएल मधुवाला विकसित कर रहे हैं। एक हमारे देशक जो उत्तरी पर्वतीय और उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में जो खेत छो वाक लीजिए अनुमोदित करी जरो। और वीएल वीएसएल 26 और वीएसएल 38 संयोजन लेकर तैयार करी जरो। और ये किस्म स्वीट कॉर्नक पंक्ति में वीएसएल 26 और वीएसएल 38 संयोजन तैयार छू। और हमारे जो बहुत परीक्षण करी जरिए में वह बात जो छो तैयार है जी 72x75 दिनों में जो तैयार है जी वीएल मधुवाला और हरी भत्तुक तुराई 72x75 दिनों में हम कर सकूँ। तो हमार जो उत्तराखंड छो वहाँ जी यो किस्म जो छो अनुमोदित छो किसानों आय में यो किस्म अगर हम बीनू क्योंकि वह जल्दी तैयार होने वाले छो और अधिक उपज देने वाले उत्कृष्ट स्वाद वाले छो तो यो किसानों के आय में वृद्धि लय में है सकी। तो हमार जो किसान भाई बहन छिन यो स्वीट कॉर्न के प्रजाति के लग सकने यो बाजार उन्मुख खेती और सब्जी आधारित कृषि के लिए हमार बढ़ावा देने में कारगर साबित हो। और अब कार्यक्रम में आखिर सुनूं दीवान कनवाल गई ये लोकगीत।

0: फसल बीमा
1: का। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 19,67,00,000 से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, रक्षा कवच पाओ।
4: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
5: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सुधो अब सुनो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक उर्वरक उपयोगिता विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा दगे भेंटवार्ता। इन्हें दगे भेंट करने लगे प्रमोद कुमार पांडे।

0: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा जी। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक उर्वरकों की कृषि में उपयोगिता विषय पर। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी।
0: सर हमारे काश्तकार भाई ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक उर्वरक किसी में क्या उपयोगिता है।
1: वर्तमान 21वीं सदी में संपूर्ण विश्व एक अभूतपूर्व कृषि और खाद्य सुरक्षा के संकट से गुजर रहा है। साथ ही भू राजनीतिक तनावों, वैश्विक युद्धों और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों के कारण यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे रासायनिक उर्वरकों की कमी होने के कारण कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। अधिकांश विकासशील देश इन रसायनों के आयात पर ही निर्भर है, जिसके कारण की सरकारों पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ रहा है और साथ साथ किसानों की जो खेती की लागत है उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ दशकों से रासायनिक खादों के अंधाधुंध और असंतुलित प्रयोग ने हमारी उपजाऊ भूमि की उर्वरकता को काफी कम कर दिया है। साथ ही मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत अपने प्राकृतिक जीवन शक्ति को खो चुकी है, जिससे कि उसमें मौजूद के मित्र सूक्ष्म जीव और केचुए नष्ट हो चुके हैं और फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट गई है। ऐसे विकट वैश्विक परिदृश्य में कृषि को टिकाऊ, सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाए रखने के लिए खेती में जैविक उर्वरकों का अपनाना समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है। साथ ही अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर जैसे राइजोबियम एजोटोबैक्टर और फॉस्फेट सोलिबिलाइजिंग या जिंक सोलिबिलाइजिंग बैक्टीरिया मिट्टी में सूक्ष्म जैविक गतिविधियों को तीव्र करते हैं। ये जीवित जीवाणु मिट्टी में जाकर कारखाने की तरह काम करते हैं और वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराते हैं और मिट्टी में पहले से फिक्स हुए अघुलनशील फास्फोरस, इसके अलावा अन्य पोषक तत्व जैसे जिंक और आयरन को भी घोलकर पौधों के ग्रहण के योग्य बनाते हैं। रासायनिक उर्वरक जहां पौधों को कृत्रिम रूप से केवल कुछ ही तत्व दे पाते हैं, वहां ये उर्वरक फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ जिंक, आयरन, बोरोन और मैग्नीज जैसे सभी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्राकृतिक और संतुलित रूप में प्रदान करते हैं, जिससे फसल को संपूर्ण लाभ होता है।
0: जी सर, तथा हमारे किसान भाइयों को अभी भी बताइए कि जैविक खेती में विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु कौन कौन से जैविक खादों का प्रयोग कर सकते हैं।
1: प्रमोद जी, कृषि में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद सबसे सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक पौधों और जानवरों के अवशेषों से तैयार की जाती हैं, जैसे गोबर की खाद, केचुए की खाद जिसे वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, हरी खाद, पोल्ट्री खाद
0: जी।
1: मिट्टी को केवल पोषक तत्व ही प्रदान नहीं करते बल्कि उसके समग्र स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करते हैं और साथ ही ये मिट्टी की भौतिक संरचना को सुधार कर उसे भुरभुरा और हवादार भी बनाती हैं, जिससे कि पौधों की जड़ों का विकास तेजी से होता है और इसका एक सबसे बड़ा लाभ मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होना है। जैविक तत्वों से भरपूर मिट्टी वर्षा के पानी या सिंचाई के जल को अधिक लंबे समय तक जो है वो सोख कर रख सकती है, जिसके कारण सूक्ष्म और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सूखे की स्थिति में फसलें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं और किसानों को बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे बहुमूल्य जल संसाधनों का संरक्षण होता है। अब बात करें जैसे गोबर की खाद जो है भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है, इसमें मवेशियों का गोबर, मूत्र और विछावन का अवशेष होता है और अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद में अगर हम देखें तो लगभग 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस और 0.5% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। केचुए की खाद को जो है कृषि का काला सोना भी कहा जाता है और जब केचुए गोबर और जैविक अवशेष को खाते हैं तो उनके पाचन तंत्र से निकलने वाला जो मल या कास्टिंग जिनको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाता है और इसमें सामान्यतः गोबर की खाद की तुलना में 5 गुना अधिक नाइट्रोजन, 7 गुना अधिक फॉस्फोरस और 11 गुना अधिक पोटाश होता है। इससे पौधों की वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन भी होते हैं। हरी खाद की अगर बात करें तो उसमें जैसे खेत में ढेंचा, सनई या मूंग जैसी फसलें उगाई जाती हैं और लगभग 45 से 50 दिन के बाद जब फसलों में फूल आने वाले हों तब इन्हें हल चलाकर सीधे मिट्टी में पलट दिया जाता है। यह मिट्टी में प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन और प्रचुर मात्रा में ह्यूमस जो है वो जोड़ती है। इसके अलावा कुछ खलियां भी हैं जिसमें सरसों, नीम, महुआ, अरंडी की खली संकेंद्रित जैविक खाद के उदाहरण है और नीम की खली न केवल पौधों को पोषण देती है बल्कि मिट्टी में लगने वाले हानिकारक कीड़ों जैसे दीमक और सूक्ष्म जीव सूक्ष्म कृमि निमेटोड को भी नष्ट करती है।
0: जी सर, आपसे हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि जैव उर्वरक क्या होते हैं और कौन कौन से पोषक तत्व फसलों को सुलभ कराने में सक्षम है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रमोद जी आपने। जैसे जैव उर्वरक कोई रासायनिक या पारंपरिक खाद नहीं है बल्कि ये जीवित सूक्ष्म जीवों की निर्धारित मात्रा को नमी धारक धूलिय पदार्थ जैसे चालकोल, लिग्नाइट, टैल्क, पीट या तरल पदार्थ आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं, जिन्हें प्राय कल्चर हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया, जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है और ये बाजार में उपलब्ध भी है। अब जैसे मैंने बताया कि जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के बने होते हैं और उन सूक्ष्म जीवों में से निर्मित जैव उर्वरकों में पादप वृद्धि कारक और रोग प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं जो कि पौधों को आवश्यक मुख्य पोषक तत्व तो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तथा सूक्ष्म पोषक तत्व तो जैसे जस्ता, तांबा, लौह और मैग्नीज आदि उपलब्ध कराने में सक्षम है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे हार्मोन, जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं जो कि पौधे की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा यह सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं जो फसलों को रोगों से बचाते हैं और इनके प्रयोग से पृथ्वी पर कोई दुष्परिणाम ही नहीं पड़ता बल्कि ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को और जैविक शक्ति को सुधार कर उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं।
0: जी सर, हमारे काश्तकार भाई आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फसलों को नाइट्रोजन पोषक तत्व सुलभ कराने वाले जैव उर्वरक कौन से हैं?
1: प्रमोद जी, फसलों को नाइट्रोजन पोषक तत्व सुलभ कराने वाले जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु से बनाए जाते हैं जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक या नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है।
0: जी,
1: अब इसमें अगर हम बात करें तो पहला जैसे राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो केवल दलहनी फसलों जैसे मटर, मसूर, राजमा, फ्रेंच बीन, सोयाबीन, गहत, कुल्थी, मूंगफली, अरहर, चना, उड़द, मूंग इनकी जड़ों में जो गांठे बनती है उनमें रहता है।
0: जी,
1: और ये हवा से नाइट्रोजन लेकर सीधे पौधों को देता है और बदले में पौधे से भोजन लेता है। इसके प्रयोग से रासायनिक नाइट्रोजन की 20-25% तक की बचत होती है और इनके प्रयोग से फसलों को 50 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इसके प्रयोग से विभिन्न दलहनी फसलों की उपज में 10-15% तक की वृद्धि करने में ये जीवाणु सक्षम है। दूसरे हैं एजोटोबैक्टर जो कि एक मुक्त या जिन्हें कहना चाहिए फ्री लिविंग जीवाणु है जो कि मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहता है और मुख्य रूप से गैर दलहनी फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का, मड़ुआ, मादिरा, बाजरा और गन्ने की जड़ों में के पास रहकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है।
0: जी,
1: ये पौधे की जड़ों के विकास के लिए एंटीबायोटिक और विकास हार्मोन भी स्रावित करता है। इस जीवाणु के प्रयोग से फसलों को प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है और उपज में करीब 10-15% तक की वृद्धि करने में सक्षम है।
0: जी,
1: इसी में तीसरी जो श्रेणी के हैं वो है एजोस्पाइरलम जीवाणु जो कि घास कुल की फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, मादिरा, रागी, चारा की फसलें की जड़ों के भीतर और बाहर रहकर हवा की नाइट्रोजन की को मिट्टी में स्थिर करता है। इस जीवाणु द्वारा फसलों को 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ मिलता है और इस जीवाणु का प्रयोग कर फसलों की उपज में 5-10% तक की वृद्धि करने में सक्षम है।
0: जी,
1: इसका प्रयोग हमारे किसान भाई विभिन्न धान फसलों जैसे का मड़ुआ, मादेरा, धान आदि में कर सकते हैं क्योंकि इन फसलों के साथ साथ इस जीवाणु की विशेषता पाई गई।
0: जी सर, यानी कि सर इस प्रकार के सूक्ष्म जीव बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, पर सर ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है प्रमोद जी कि ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में फसलों की जड़ों पर, विशेष रूप से दलहनी फसलों की जड़ों पर, उन पे जो गांठें बनती हैं, जो ग्रंथियां बनती हैं उन पर, पत्तियों पर, तने पर, एक तरीके से देखो तो पौधे के कोई सभी स्थानों पर ये लाभ देने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं।
0: जी सर, सर अभी खरीफ का समय चल रहा है और हमारे किसान भाई और बहन खरीफ में बोई जाने वाली किनकी फसलों में इन जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं?
1: हमारे किसान भाई बहन खरीफ में बोई जाने वाली जैसे विभिन्न फसलें हैं जैसे दलहनी फसलों की अगर बात करूं तो सोयाबीन, गहत और कुल्थी, राजमा और हमारी जो धान या अन्य फसलें हैं जैसे धान, मक्का, मड़ुआ, मादिरा, सब्जियों इत्यादि में विभिन्न पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने वाले एवं फसलों के उन्नत उत्पादन के लिए इन पादप वृद्धि कारक जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी सर, सर हमारे किसान भाई बहन इन जैव उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करें?
1: मुख्य बात यह है कि इन सूक्ष्म जीवों आधारित जैव उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करें, इसके लिए एक विशेष सूक्ष्म जीवों की निर्धारित मात्रा को जिसे मैंने बताया नमी धालक, धूलि पदार्थ, चारकोल, लिग्नाइट आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं जिसे प्राय कल्चर या बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि एक प्राकृतिक उत्पाद है और अगर हम देखें सामान्यतः किसी भी फसल के 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरक जो है पर्याप्त होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई क्या करें, छायादार जगह पे साफ बोरी, अखबार, पॉलिथीन या कोई कपड़ा बिछाकर उस पर बीजों की जो है ढेरी बना लें। उसके बाद में उस बीजों के ऊपर पानी को छिटक के बीजों के साथ अच्छी प्रकार मिलाएं ताकि हमारे जो बीज हैं वो पानी से गीले हो जाएं और उसके बाद इन जैव उर्वरकों की इस मात्रा को बीजों के ऊपर डाल लें और हाथों से अच्छी प्रकार मिलाएं ताकि प्रत्येक जैव उर्वरक के ऊपर जो है एक समान परत चिपक जाए और इस प्रकार उपचारित बीजों को करीब 20 से 25 मिनट छाया में सुखाकर उनकी बुवाई कर देनी चाहिए।
0: जी,
1: दो या अधिक जैव उर्वरकों का अगर एक साथ प्रयोग करना है तो उनकी आवश्यक मात्रा को एक साथ घोल बनाकर बीजों के उसका उपचार करना चाहिए।
0: जी,
1: तो ये तो बात रही कि हम बीजों का उपचार कैसे करें। इसी तरीके से हमारी जो फसलें जिनमें हम रोपाई करते हैं जैसे धान हो गई और सब्जियां हो गई, तो उनका उपचार करने के लिए जैव उर्वरकों को की 1 किलोग्राम मात्रा का जो है 25-30 लीटर पानी में घोल बना लिया जाता है। और उसमें सबसे पहले हमारे किसान भाई जो पौधे की जड़ें हैं उन्हें बहते हुए पानी में धो लें, और धोने के बाद जो हमने ये जैव उर्वरक का जो घोल हमने बनाया है पानी में उसमें उनकी जड़ों को जो है डुबो कर रख दें और उसमें करीब 20-25 मिनट रखी रहने दें। उसके बाद में इन

0: हमारी उनका जो है रोपाई किसान भाई सीधे खेतों में कर सकते हैं।
1: सर, इन जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय हमारे काश्तकार भाइयों को कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: प्रमोद जी, जैसे एक जैव उर्वरक जो एक जैव उत्पाद है और इसका प्रयोग करने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे किसान बंधुओं को कुछ सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो जैसे जैव उर्वरक से मिलने वाला लाभ उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अतः किसी सरकारी संस्थान या विश्वसनीय स्रोत से ही अच्छी गुणवत्ता का जैव उर्वरक क्रय करें। दूसरा ये कि जैव उर्वरकों का जो भंडार है ना, वो ठंडी और छायादार स्थान पर ही करें और इनका प्रयोग जो है हमारे किसान भाई उस पैकेट पर जो अंतिम तिथि लिखी रहती है और फसल का नाम लिखा रहता है उसके साथ अवश्य करें। और इसका उपचार जो है वो किसी साफ फर्श, पॉलीथीन या बोरे पर ही करना चाहिए। बीजों को जो है वो धूप में नहीं सुखाना चाहिए, नहीं तो हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाएंगे और हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ भी नहीं मिल पाएगा। साथ ही इन जैव उर्वरकों को सीधे रासायनिक उर्वरकों एवं खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कीटनाशी हो गया, खरपतवार नाशी हो गए, उनके साथ हमारे किसान बंधुओं का इसका प्रयोग नहीं करना है।
1: जी सर। सर, हमारे जैविक उर्वरकों से यानी कि मिट्टी को और पर्यावरण को क्या क्या लाभ मिलता है?
0: सबसे पहले तो जैव उर्वरक जो है वो मिट्टी में जो छिद्रता जिसको हम सॉयल पोरोसिटी कहते हैं उसमें सुधार होता है और ये मिट्टी के कणों को आपस में बांधकर दानेदार बनाते हैं जिससे कि मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है। साथ ही ये पर्यावरण अनुकूल है
1: जी।
0: और रासायनिक उर्वरकों की तरह इनमें लीचिंग नहीं होता जिससे भूजल और नदियों का प्रदूषण होने से बचती हैं
1: जी।
0: और साथ ही ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को हमेशा बनाए रखते हैं जिससे आने वाले कई दशकों तक हमारे किसान बंधु अच्छी पैदावार और टिकाऊ उत्पादन इससे ले सकते हैं
1: जी सर।
0: इसके अलावा अगर देखें तो जैविक उर्वरक पर्यावरण और मानव सभ्यता के अस्तित्व की रक्षा के लिए अनिवार्य है। साथ ही जैविक उर्वरक पर आधारित कृषि पूरी तरीके से विषमुक्त, शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्रदान करती है जो कि मानव स्वास्थ्य को सुरक्षा देता है और इसके साथ ही ये पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाती और मिट्टी, पानी तथा हवा के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती है। इसलिए वर्तमान वैश्विक कृषि परिदृश्य में जैविक उर्वरक महज एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य और टिकाऊ खेती का एकमात्र ठोस आधार है।
1: जी सर। तो सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, अब चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से और क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि जिस तरीके से वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य चल रहा है और हमारे जो रासायनिक उर्वरक है उनकी कमी आई है तो हमारे जैव उर्वरक कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो जैविक उर्वरकता और हमारे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में बहुत आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं और साथ साथ उनकी उत्पादकता और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
1: जी सर। तो सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वाले काश्तकार भाइयों को दी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता मूल्य आप सुनो, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जैविक उर्वरक उपयोगिता विषय पर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा दगे भेंटवार्ता और इनर दगे भेंट करने लाग रहा छी प्रमोद कुमार पांडे। श्रोताओं, जिसके आप जान छा कि हम हर रोज अपूल जी कृषि सलाह लिभे रुनू, तो आजक कृषि सलाह जो हमर तरफ आपू के रोज वो हम यो भेंटवार्ता के दगे एक संबद्ध करनू जोड़नू। तो आजक जो सलाह छ कृषकों के उच्च उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करते हुए कृषि भूमि उर्वरा शक्ति के बढ़ाए, तो हमन के अपने कृषि भूमि उर्वरा शक्ति के बढ़ाना के लिए कि लेकिन हमन के लंबे वक्त तक खेत करने चाहो, उड़ी वाली पीढ़ी के लिए एक संतुलित जीवन देने चाहिए, स्वस्थ जीवन देने चाहिए, तो व्यक्ति जी हमन के अपने खेतों में उर्वरकों, कीटनाशकों और रासायनिकों का जो प्रयोग छे वो संतुलित मात्रा में करन पड़ा और है सकूँ तो ना के बराबर हमन के करन पड़ा, कम करन पड़ा, क्योंकि उन्हीं वाले जो बखत छ वो जैविक उत्पादक छ, ऑर्गेनिक उत्पादक छ, क्योंकि ऑर्गेनिक जब हम कुनु तो का हम जैविक उत्पादक जो उत्पादन छ वो का हम का जो बाजार में वह के भल कीमत ले हमन के मिल छे, तो हमन के अपन खेतों में जैविक उर्वरकों का प्रयोग करन चाहिए। तो आप मठोमठ बखत को आजक किसानवाणी कार्यक्रम के तीके संपन्न करना बहुत लपुदा के फिर भेंट होल एल कृष्ण सिंह नटवाल के दियो अनुमति नमस्कार। हमारे कार्यक्रम का प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का देहरादून। आइए सुनते हैं कुमाऊनी भाषा में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार दगड़ी मी कुसुम पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून मा सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका विमोचन करो को सौर ऊर्जा भविष्यक आवश्यकता छो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानल CBSE कक्षा 12 परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में मतभेद बटी संबंधित छात्रों सभ्य शिकायतों समाधानक भरोसा दी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल मासिक धर्म के लिए समाज में फैली भ्रम के दूर करने आवश्यकता पर बल दी। और मौसम विभागल आने वाले 24 घंटों के दौरान गढ़वाल मंडलक ज्यादातर जिलों में अतिवृष्टि पूर्वानुमान जारी कर रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका विमोचन करो। यो अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल केवल एक पुस्तिका विमोचन नाती बल्कि उत्तराखंडक उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्यक निर्माणक दिशा में सामूहिक संकल्पक प्रतीक छो।
3: भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
2: मुख्यमंत्री को कि वर्तमान समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहाती बल्कि आनवल पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य आवश्यकता बन गो। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत राज्य 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य बखत हबीर पहले पुर कर हेलो और निर्धारित लक्ष्य लगभग 95% काम ले पुर कर हेलो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम पुलिस के आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वजल सम्मानित करो। यह अवसर यह पुरस्कार के प्राप्त करण वाल सिक्किम देशक 15 राज्य और पूर्वोत्तरक 3 राज्य बन गो। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्रक असाधारण सेवा अटूट अनुशासन और समर्पणक लिजी देशक पुलिस बल के दी जाने वाल सर्वोच्च सम्मान छो। समारोह के संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुलिस बल के अधिक नागरिक केंद्रित बनक ले आग्रह करो। उन्होंने पुलिस बल ने विशेष रूपल श्रेणियों गरीबों और नांदिनों प्रति संवेदनशील ऋणक आग्रह ले करो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानल विद्यार्थियों के भरोसा दिला कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू करी गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OCM प्रणाली ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उद्देश्य एक प्रगतिशील साधन छो। श्री प्रधानल नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों दगड़ बैठक के बाद संवाद दाताओं दगड़ बातचीत में यह बात कह उन्होंने विद्यार्थियों के भरोसा दी कि चल नई पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान करी जाए।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTEL संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर हेली। NTEL के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई और 6 और 7 जून के आयोजित करी जाए। NTEL बता कि रविवार के परीक्षा दृढ़ वाल उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर हेली और इन्हें के NTEL आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTEL

0: www.nic.in बटी डाउनलोड करी जा सकूं। 6 और 7 जून के परीक्षा देने वाले बाकी उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी करी जाएं।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल को की मासिक धर्म के लिए समाज में कई भ्रम फैली छन जिनके दूर करण जरूरी छु। वे आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवसक अवसर पर देहरादून में आयोजित किशोरियों और श्रेणियों जागरूकता तथा प्रशिक्षण शिविर के उ संबोधित करने छी। उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया छु और यके लिए समाजक सोच में सकारात्मक बदलाव लान जरूरी छू। श्रीमती आर्याल किशोरियों लीजी संतुलित और पौष्टिक आहार तथा मासिक धर्मक दौरान साफ सफाई बनाए रखने पर विशेष जोर दी।
2: बालिकाएं हैं हमारी, जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है।
0: यह अवसर पर उन्होंने किशोरियों और चीलियों के मासिक धर्म स्वच्छता किट ले बांटी। ध्यान दिन वाल बात छू की देश भरक हजारों जन औषधि केंद्रों में मात्र 1 रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई जानी। राज्यपाल गुरमीत सिंघल आज असम भ्रमण दौरान गुवाहाटी स्थित लोक भवन में असमक राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दगड़ मुलाकात ले करी। यह दौरान दोनों राज्यपालों के बीच समसामयिक विषयों, सुशासन, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रहित बटी जुड़ी अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श हो। भ्रमण दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंघल लोक भवन असमक भव्यता, आधुनिक संरचना और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के समाहित करती यांक वास्तुकला सराहना लेकरी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारतक विविधता, विकास और सांस्कृतिक विरासत सदैव प्रेरणादायी रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भव्य स्वागत करो। वे राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन बटी जुड़ी दोहर महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं दगर विचार विमर्श तथा मंथन करल। श्री नवीन मंत्रियों दगर अलग ले बैठक करल जिनमें सरकारक कामकाज, जनसंपर्क और आगामी रणनीति पर चर्चा करी जल। वे कांग्रेसक वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्विदिवसीय उत्तराखंड दौरा ले तय है गो। वे 4 जून के अलमाड़ में एक जनसभा और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन के संबोधित करल। एक बात 5 जून के ऊ देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यों, विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेसक सहायक संगठनों प्रतिनिधियों दगड़ बैठक करल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियालल राहुल गांधी दौरक ले जानकारी दी। राजधानी देहरादून में भोल के ब्रिक्स अकादमिक माध्यावधि सम्मेलन आयोजित करी जाल। सम्मेलनक थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकासक निर्माण पर केंद्रित रोल। सम्मेलनक उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंहक विशेष वीडियो संदेश ले प्रसारित करी जाल। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों प्रमुख विद्वान, नीति विशेषज्ञ और विचारक शामिल होल। यमे हरित औद्योगिक परिवर्तन, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों माध्यमल, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जस विषयों पर विस्तृत चर्चा करी जाल। मौसम विभागल आगामी 3 जून ताले राज्यक अलग अलग जिलों में द्योग पूर्वानुमान जारी कर रहो। विभाग अनुसार आणवाल द्वी दिन राज्यक ज्यादातर जिलों में हल्क हबेर मध्यम द्योग और 3,800 मीटर हबेर सकर ऊंचाई वाल जागो में ह्यू पातक अनुमान छो। दगड़े ही आणवाल 24 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरगढ़ जिलों में कैके चाल चमकन, झोंकदार बयाव, चलनक और अतिवृष्टिक संभावना बनी हुई छो। वह मौसम विभागल 30 मई बटी 1 जून ताले खराब मौसमक येलो अलर्ट ले जारी कर रो। यह अवधि में चार धाम श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों दे अनावश्यक यात्रा बटी बचनक और सुरक्षित जागो पर रुनक ले अपील करी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल पौड़ी गढ़वालक श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT के निर्माण कामों में तेजी लाने के निर्देश दी रही। देहरादून में तकनीकी शिक्षा विभागक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संस्थानों के बिजली, पानी और सड़क दगड़े सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करे ली। बैठक में मंत्री विभागक अधिकारियों और कार्मिकों वार्षिक स्थानांतरण बखत पर करने के निर्देश दी। उन्होंने 1 हफ्ते भीतर विभागक अंतर्गत दोहर विभागों में प्रतिनियुक्ति और संबद्धता पर कार्यरत सभी कार्मिकों के मूल पदों पर वापस भेजने के लिए निर्देश दिए। आखिर में मुख्य समाचार एक बार आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन करो। कौ सौर ऊर्जा भविष्यक आवश्यकता छू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानल CBSE कक्षा 12 परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में मतभेद बटी संबंधित छात्रों सभी शिकायतों समाधानक भरोसा दी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल मासिक धर्म के लिए भी समाज में फैली भ्रमों के दूर करने की आवश्यकता पर जोर दी। और मौसम विभागल आणवाल 24 घंटों के दौरान गढ़वाल मंडलक ज्यादातर जिलों में अतिवृष्टि पूर्वानुमान जारी कर रो। यो का दगड़ ही कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों यो अंक ये समाप्त हूँ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म की ये कवाली। साबरी ब्रदर्स के स्वरों में समीर का लिखा ये पद है और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

सिर्फ तुम फिल्म की ये कव्वाली अभी आपने सुनी, और कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ों में परदेस फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा गीत है और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं बशीर बद्र का कलाम, स्वर है अनुराधा।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए आप सुनते हैं जफर हुसैन बदायूनी और साथियों के स्वरों में ये कव्वाली।

श्रोताओं, जफर हुसैन बदायूनी और साथियों के सरों में ये कव्वाली अभी आपने सुनी, और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को। कलाम है निदा फाजली का।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

निधा फाजली का एक कलाम अभी आपने सुना, स्वर थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह के। इसी के साथ आज का मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 होने को हैं। अब अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में सचिन खलप्पा शिरोल और रुद्र किरण निम्हान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में आर प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन जीत दर्ज की। शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, सात्विक चिराग और ध्रुव तनिषा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला टी20 श्रृंखला आज से शुरू। पहला मुकाबला आज रात 11 बजे से कैम्सफोर्ड में।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां भारतीय अंडर 17 कुश्ती के खिलाड़ियों ने आज भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबैद को 11-4 से हराया। वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निमहान ने कोरिया के शियोक मोसिम को 8-0 से मात दी। हाल ही में अंडर 23 कैटेगरी में भारतीय टीम चैंपियन बनकर उभरी और भारत ने कुल इस प्रतियोगिता में अंडर 23 में 27 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया था। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए अंडर 17 कैटेगरी में आज भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुश्ती प्रशंसकों को इस प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद होगी। इसे चलते हैं सीधे चेस के मैदान की ओर, जहां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के राउंड 3 में आर प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
1: नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में भारतीय स्टार खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्लासिकल चेस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। प्रज्ञानंदा ने धीरे धीरे एक लंबे गेम में कार्लसन को पीछे छोड़ दिया और ज्यादातर समय तक कंट्रोल में दिखे। हालांकि समय की भारी कमी के कारण मैच का रुख बदल गया और कार्लसन ने इसका फायदा उठाते हुए बढ़त हासिल कर ली। कुछ देर बाद नॉर्वे के स्टार ने दबाव में आकर एक बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और टूर्नामेंट लीडर अलीरेजा फिरोजा ने कड़े क्लासिकल मुकाबले में ड्रॉ खेला। फिरोजा ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की। विंसेंट किमर और वेस्ली सो के बीच बचा हुआ क्लासिकल गेम भी एक संतुलित संघर्ष के बाद ड्रॉ पर खत्म हुआ। वेस्ली सो ने अतिरिक्त पॉइंट्स इकट्ठा करके आर्मागेडन गेम को अपने नाम कर लिया। तीसरे राउंड के बाद फिरोजा एक और शानदार प्रदर्शन के बाद तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। नॉर्वे चेस विमेंस में एक बार फिर करीबी मुकाबले देखने को मिले। 3 क्लासिकल मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए और फिर मैच के नतीजे का फैसला आर्मागेडन से हुआ। मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जू वेंजून और झू जिनर का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। झू जिनर ने एक समय अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन वह इसे जीत में नहीं बदल पाई। झू ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। एना मुजी चूक और कोनेरू हम्पी ने भी एक संतुलित संघर्ष के बाद अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ पर खत्म किया। मुजी चूक ने बाद में आर्मागेडन गेम में जीत हासिल करके अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। क्लासिकल चेस में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर रही और अंत में खेल ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बाद आर्मागेडन ट्राई ब्रेकर खेला गया, जहां दिव्या ने आर्मागेडन गेम जीत कर अतिरिक्त पॉइंट्स हासिल किए। तीसरे राउंड के बाद दिव्या और जू जिनर ने आर्मागेडन में अहम जीत हासिल करके अंतर को थोड़ा कम किया। इसके बावजूद असुबाएवा नॉर्वे चेस विमेंस में अभी भी बढ़त बनाए हुए है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम।
0: शतरंज की बाजियों से रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया।

0: गया है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन करते भारतीय खिलाड़ियों पर आज की रिपोर्ट।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अलग अलग अंदाज में जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि एचएस प्रणॉय कई गलतियों की वजह से बाहर हो गए। सिंधु ने 37 मिनट के भीतर जापान की रिको गुंजी को 21-9 21-12 से हराया। अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की आन से यंग से होगा। लक्ष्य ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, क्योंकि दूसरे वरी कुनलावुत ने महज 2 अंक के बाद पीठ की समस्या के कारण रिटायर होने का फैसला किया। अब 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य का सामना जापान के कोकी वातानाबे से होगा। पुरुष डबल्स में चौथी वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 1 घंटे तक चले कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे के ली झी हुई और यांग पोसुआन को 21-15 11-21 21-18 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब उनका सामना मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोन ताई से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी अंतिम 8 में पहुंच गए, जिन्होंने जापान की युता वातानाबे और माया तागुची को 8-21 21-17 21-16 से मात दी। अब उनका सामना कोरिया के किम जाय ह्योन जांग और हाजियोंग तथा मलेशिया के चीन तांग जिए और तोई वेई के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रणॉय आखिरी गेम में बुरी तरह पिछड़ गए और 61 मिनट तक चले मैच में घरेलू दावेदार लोकीन यू से 18-21 21-16 15-21 से हार गए। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: अब रुख करते हैं पैरा एथलेटिक्स की ओर। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में दो बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने कल पुरुषों की जैवलिन F64 कैटेगरी में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। बेंगलुरु में एक शानदार थ्रो के साथ अंतिल ने पैरा जैवलिन थ्रो प्रतियोगिताओं के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा।
2: सुमित अंटिल ने 74.82 मीटर का थ्रो करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने 73.29 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसे उन्होंने 2022 के हांगचो एशियाई पैरा गेम्स में बनाया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अंटिल ने साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में अपना खिताब बरकरार रखा। हरियाणा की ओर से सुमित ने 74.82 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने रजत और राजस्थान के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की ऊंची कूद के T64 कैटेगरी में पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रवीण कुमार ने 2 मीटर की ऊंचाई पार करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि वरुण सिंह भाटी ने 1.84 मीटर की ऊंचाई पार कर सिल्वर मेडल हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 57.84 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर T47 कैटेगरी में महाराष्ट्र के दिलीप गावित ने 47.64 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में हरियाणा के रिंकू ने अजीत सिंह और रवि कुमार को पछाड़ा। फील्ड स्पर्धाओं में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। हनी ने 60.70 मीटर का थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता, जबकि प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 में 34.04 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में गुजरात की निमिषा चकुंगल ने लंबी कूद का स्वर्ण पदक जीता, जबकि भावना बेन अजब चौधरी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब 37.01 मीटर के साथ अपने नाम किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: रांची में हुए एथलेटिक्स फेडरेशन कप में कई रिकॉर्ड बने और इस प्रतियोगिता में भी एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रुख कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की ओर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स में यानिक सिनर ने जुआन मैनुअल सेरून डोले को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने थॉमस मचाक को हराया। महिला सिंगल्स में अमांदा अनिसिमोवा, आर्याना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे। वहीं कल 3 बार

0: चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। कर लेते हैं क्रिकेट की ओर। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान ने कल हुए एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से मात देकर क्वालिफायर टू में जगह पक्की कर ली।
1: कल महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए। राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 48 गेंदों में 125 रन की साझेदारी की। वैभव ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही वैभव ने क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
2: स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड अगेन, ही इज पुटिंग ऑन अ शो दिस यंग मैन वैभव सूर्यवंशी। नाउ ओवर थर्ड, पुश द रोप्स बैक, स्लैम्ड अगेन, ही इज टॉयिंग विद वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ आवर गेम एट द मोमेंट।
1: वैभव 15 मैचों में 65 छक्कों के साथ 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं।
2: व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ प्लेयर, वंडर किड।
1: इसके बाद कप्तान रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की। ध्रुव ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। इसके अलावा ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार और नीतीश रेड्डी ने एक एक विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 19.2 ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। हैदराबाद को दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन ने ट्रेविस हेट के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 15 गेंदों में 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी, लेकिन ईशान 11 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सलील अरोड़ा ने नीतीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। नीतीश 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलील ने 35 रन की पारी खेली। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यशराज ने 1 विकेट अपने नाम किया। वैभव को तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद वैभव ने कहा कि मैं जब तक क्रीज पर रहूंगा इंटेंट दिखता रहेगा।
3: सभी कोचेज ने बोला था कि जो प्रैक्टिस में करते आ रहा है वही इस गेम में करना है, एंजॉय करना है और प्रेशर नहीं लेना इस गेम का।
1: सचिन तेंदुलकर की ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए वैभव ने कहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट से सराहना मिलना मेरे लिए गर्व की बात है।
3: काफी अच्छा लगता है सर, मोटिवेशन मिलता है आपको और सब जानते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट है वो, तो उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया है तो हमारे लिए काफी बड़ी बात है कि उनके ऐसे लेजेंड ने ट्वीट किया है, तो ऑफकोर्स खुद में प्राउड की बात है।
1: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान का मजबूत बल्लेबाजी क्रम किस प्रकार गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना करता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो वैभव का सूर्योदय हो चुका है और उनके प्रदर्शन से पूरा क्रिकेट जगत जगमगाया हुआ है। और अब रुख कर लेते हैं महिला क्रिकेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार आज रात 11 बजे कैम्सफोर्ड में खेला जाएगा। इंग्लैंड श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 30 मई को, वहीं तीसरा मुकाबला 2 जून को खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होने वाली महिला T20 विश्व कप में अंपायरिंग के लिए ICC ने 18 सदस्यीय महिला अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें मैच रेफरी GS लक्ष्मी सहित 4 भारतीय अंपायर शामिल हैं। अब फुटबॉल की भारतीय अंडर-20 फुटबॉल पुरुष टीम को AFC अंडर-20 एशियाई कप चीन 2027 क्वालिफायर्स के लिए ग्रुप बी में उज्बेकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। ये क्वालिफायर्स 25 अगस्त से 6 सितंबर तक ताशकंद में होंगे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर

0: से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में

0: मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे

0: करीब 12 बजे अंतिम सांस ली, आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
2: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
2: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
0: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिन फेरे हम तेरे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीत निर्देशन है उषा खन्ना का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं हसन कमाल का लिखा है गीत, धुन तैयार की है रवि ने, आवाम फिल्म का एक गीत है और गीत का आवाज़ दी है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रूपक तूती ए हिंद। संजय सिंह वर्मा का लिखा हुआ ये रूपक हजरत अमीर खुसरो के कृतित्व पर केंद्रित है।

0: प्रस्तुत है रूपक।
1: दरगाह निजामुद्दीन औलिया के सूफी सैयद नाजिम अली निजामी कुछ यूं बताते हैं।
2: ये हुआ कि जब खानकाह आई हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की, वो बाहर बैठ गए। शायरी का दिमाग था, दिमाग में एक शेर सोचा उन्होंने और ये कहा कि अगर इस शेर का जवाब वो शेर में ही मुझे देंगे तो मैं समझूंगा ये पीरे कामिल हैं, पीरे गुरु हैं, तो फिर मैं इनका मुरीद हूँ। इतने में एक अंदर से खादिम आया और कहा तुम्हारा नाम खुसरो है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए बाबा निजामुद्दीन औलिया ने एक कलाम भेजा है। जो हजरत अमीर खुसरो ने कलाम सोचा था अपने जहन में वो था, तुआ शाये के बर ऐवान कसरत कबूतर गर नशीनत बाज गर्दत गरीबे मुस्तमंदे बर दरामद बेआयद अंदरू या बाज गर्दत। इसका मफहूम यह है कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है कि तुम्हारे महल के कंगूरे पे अगर कोई कबूतर बैठे तो तुम्हारी बरकत से वो बाज बन जाए। एक हाजतमंद जरूरतमंद तुम्हारे दरवाजे पे आया है, वो अंदर आ जाए या वापिस चला जाए। सबसे बड़ी बात कमाल की ये थी कि ये दिमाग में सोचा है, लिखा नहीं है, मुंह से बोला नहीं है, उसका जवाब बाबा निजाम साहब ने भेज दिया। बेआयद अंदर हूँ ऐ मर्द हकीकत कि बामायक नफस हमराज गर्दत अगर अब लबूदम मर्द नादा जियारा अमद पास गर्दत। इसका मफहूम यह है अंदर आ जा ऐ मर्द हकीकत, तू अगर ऐसा मर्द हकीकत है कि तू मेरा अंदर समा जा मैं तुझ में समा जाऊं तो तू अंदर आ जा, अगर तू बेवकूफ है तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापिस चला जा। शायरी के वजन के हिसाब से वही हम वजन, सवाल जो था उसका जवाब। फिर वो अंदर गए, उनके कदमों में गिर गए और फिर आखिर जिंदगी तक यही रहा कि जो निजामुद्दीन औलिया साहब कहते थे वही वो करते थे।
3: उस दिन ख्वाजा से खुसरो का जो रूहानी रिश्ता जुड़ा उसका रंग वक्त के साथ गहरा और गहरा होता गया।

0: जिसका मैं आका हूँ उसके अली आका हैं।
1: संगीत खुसरो के रग रग में था, उन्होंने नए नए राग, बंदिश, ख्याल, तराना ही नहीं रचे बल्कि तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्रों की अस्तित्व यात्रा में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। खुसरो की परंपरा से संबंधित दिल्ली घराने के संगीतकार इकबाल अहमद खान देहलवी।
2: अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने बहुत बड़ा काम यह किया है कि अरबी रानी रागों को हिंदुस्तानी रागों में मिला के नए नए राग रागनियां बनाई। बहुत मिसालें आपकी, और हिंदुस्तानी रागों के कंट्रास्ट पे बहुत से राग बनाए। जैसे जयजयवंती वाला का राग था जैसे वंती के कंट्रास्ट में गारा बनाया, उसी का नोट

0: भगवती रही गा रहा है। यहाँ बसंत था, हमारे यहाँ सरस्वती माँ से इसकी हम उत्पत्ति मानते हैं बसंत की, तो उन्होंने बहार बनाया। बहार इज द पर्सन वर्ड। उन्होंने मृदंग को और पखावश को काट के तबला बनाया, दो भाग अलग बना के, और तबले की ताले बनाई। उन तालों का नाम बहुत मशहूर है, फरोदस्त, सुलफाख्ता और चपत ताल। इसी तरह साज बनाया सितार, से तार, ये तीन तार का था। इसमें हर दौर में उस्ताद ने अपनी जिद्द लगाई, उपज लगाई और तार बढ़ाते गए, तो आज 17 तारों का साज हो गया।
1: खुसरो ने मौसीकी को खुदा की अकीदत का एक जरिया माना और दुनिया को कव्वाली से रूबरू करवाया। आज भी रोज शाम को उनकी दरगाह पर इसके रंग ऐसे ही बिखेरे जाते हैं।

0: खुसरो के लिखे ये गीत, कवित, दोहे, पहेलियां, मुकरियां आम जनमानस की भावनाओं की आत्माभिव्यक्ति ही नहीं परन हिंदी साहित्य को भी समृद्ध करते हैं। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित।
1: साहित्य क्षेत्र में संगीत के अतिरिक्त तो एक बहुत बड़ा योगदान है खुसरो का, और वो है गजल का आविष्कार। ये गजल छंद जो आया अरब फारिस से है, लेकिन उसको भारतीय ढंग से, उसके अपने मक्ते हैं, उसके अपने रुतबे हैं, ये सारा छंद शास्त्र नए ढंग से उन्होंने बनाया और उसको जनजीवन के साथ जोड़ दिया। पहले गजल केवल पति प्रेमी है या पुरुष और स्त्री के बीच गुफ्तगू का एक माध्यम हुआ करता, उसको अनेक सांस्कृतिक तथ्यों के साथ जोड़ा और उसे इतना लोकप्रिय कर दिया कि एक जमाने में उर्दू कविता गजल और कव्वाली और ख्याल और तराना इसका पर्यायवाची बन करके रह गई।

0: दरगाहों में बसंत परंपरा खुसरो की ही देन है।
1: दरगाह निजामुद्दीन औलिया के सूफी सैयद नाजम अली निजामी।
2: बात ये थी कि हजरत नाजम साहब के एक भांजे थे हजरत ख्वाजा तकलुद्दीन नूह, अचानक उनका जवानी में इंतकाल हो गया। बचपन ही था, जवानी भी नहीं। निजामुद्दीन साहब को उनका बड़ा गम था और आपके ऊपर एक आसूदगी और रंज का इजहार हो रहा था। यहाँ तक के तारीख कहती है कि 6 महीने तक आप मुस्कुराए नहीं थे। वो जो 6 महीने बाद जो मुस्कुराहट आई वो हजरत अमीर खुसरो की वजह से आई। हजरत अमीर खुसरो के दिमाग में एकदम आई कि मैं अपने पीर को खुश क्यों नहीं कर सकता, तो आपने फौरी तौर से रंगीन कपड़े पहने

0: साफा वाफा बांधा और गले में ढोलक डाल के बसंत के ऊपर कुछ शेर कहते हुए हजरत नामन साहब के रूबरू आ गए। हजरत नामन साहब ने देखा हजरत अमीर खुसरो के अजीब रंग में, ये तो बड़े ठाट बाट से शाही प्रोग्राम करते थे, बड़े साफ सुथरे नुखसन, या ये रंगीन कपड़े पहन के गले में ढोलक डाल के क्या गाते हुए? तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो वही रस्म आज 715 साल हो गए हजरत नारायण साहब को पर्दा किए हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तमाम खानखाओं में ये बसंत का त्योहार मनाया जाता है।
1: हिंदुस्तान दुनिया का अलबेला देश, यहाँ के लोग, मौसम, परिंदे, फलसफा, रूहानियत, तहजीब, सकाफत, जबानें, और हाँ, जबानों से याद आया, संस्कृत, इसके तो क्या कहने, इतनी सारी जबानों की एक माँ, उम्मुल सिन्हा।
2: आम बोलचाल की भाषा को खुसरो ने हिंदवी कहा, वे फक्र के साथ कहते हैं,
1: चुमन तोतिये हिंद मजरास्त पुरसी, चुमन तोतिये हिंद मजरास्त पुरसी, जिमन हिंदवी पुरस ता नग्ज गोयम। मैं हिंदुस्तान का तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूं।
3: तालिब इल्म फैयाज शहरयार कहते हैं,
4: हिंदी, फारसी, उर्दू और संस्कृत को मैरी करने का काम इन्होंने किया। इन्होंने वो बोली और वो भाषा वजूद मिलाई जो बहुत मीठी बन गई, लेकिन इन्होंने अपने आप को जबानों की कैद और चार दीवारी से बिल्कुल रिहा करके नई जबान में बात की, जो जबान उनके जो मुरीद थे, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से आते थे, जिनकी एक ही जबान नहीं थी, और इन्होंने वो जबान इस्तेमाल कर ली जो उन्होंने अपनी मादरी जबान को भूलकर इख्तियार की। तो इन्होंने जो जबानों की जंग है, जो आज हम तसादुम देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, उन्होंने अपनी शायरी से, इनकी प्रैग्मेटिक शायरी जो है उसका सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि ही ब्रॉट एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंग्वेजेस।
2: हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी पहचान इंसानियत को ही खुसरो ने अपना मजहब माना।
1: काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, हर रगे मन तार गश्ता हाजते जुन्नार नीस्त। मैं इश्क का पुजारी हूं, मुझे मुसलमान होने की जरूरत नहीं, मेरी रगों ने मेरे गिर्द ऐसा घेरा बना रखा है कि मुझे जनेऊ की जरूरत भी नहीं।
5: खुसरो।

0: इश्क मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी का फलसफा है, जिसे खुसरो ने बड़ी शिद्दत से जिया ताउम्र अपने मुर्शिद की आस्ताने पर। अपनी जिंदगी उन्होंने अपने पीर और मुर्शिद के नाम कर दी थी। उनकी मौत के बाद भी इस रिश्ते को खुसरो ने ऐसे निभाया कि दुनिया में वो एक मिसाल बन गया। सैयद नाजिम अली
1: एक बात बार बार कहते थे हजरत नामुन साहब, खुसरो मेरी उम्र दराज के लिए दुआ मांगो। तो लोगों ने हजरत नामुन साहब पूछा, दुनिया तो आपके पास दुआ के लिए आती है, आप खुसरो से कहते हैं दुआ करो, ये क्या वजह? उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद खुसरो जिंदा नहीं रहेगा, जब मेरी उम्र ज्यादा होगी तो खुसरो की उम्र ज्यादा होगी, खुसरो की उम्र ज्यादा होगी तो खुसरो के कलाम से लोगों को फैज मिलेगा।
2: जब निजामुद्दीन औलिया इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके फानी जिस्म को देखकर खुसरो बेसाख्ता बोल पड़े।

0: कुछ ही महीनों बाद खुसरो ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें ख्वाजा की कब्र के नजदीक दफन कर दिया गया। तूतिये हिंद, अमीर खुसरो की जिंदगी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सफर की जिंदा दास्तान है।
1: अभी आप रूपक तूतिये हिंद सुन रहे थे। आलेख रेणु श्रीवास्तव जौहरी, नाट्यांश के

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ऐसी पंक्तियाँ जिसको खुद अपने दरवाजे पर लिखने वाले शायर बशीर बद्र आज हम सबको अलविदा कह गए। बशीर बद्र की गज़लें, बशीर बद्र के अशआर सदियों तक इंसानियत और इंसानी जज्बातों को बयां करते रहेंगे। शायर, कवि, लेखक अपने शब्द अपने समय की अभिव्यक्ति करते हुए चला जाता है और कुछ शायर, कुछ गीतकार ऐसे होते हैं जो अपने वक्त को अपनी शायरी में ऐसे खींच देते हैं कि जिनकी प्रासंगिकता हमेशा रहती है, जिनके संदेश मिसालें बन जाती हैं। ऐसे ही बशीर बद्र साहब आज अनवरत यात्रा पर इस भौतिक संसार से चले गए। सुगम संगीत कार्यक्रम में उनके लिखे कुछ गज़लें आज हम सुनेंगे। पहले प्रस्तुत कर रहे हैं ए हरिहरन की आवाज़ में ये प्रस्तुति।

बशीर बद्र का कलाम और जगजीत सिंह की आवाज़ अभी आपने सुनी। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बशीर बद्र के कलाम अलग अलग आवाज़ों में। आइए आप सुनते हैं तलत अजीज़ के स्वर में बशीर बद्र को। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं तुम भी, किसी राह में फिर मुलाकात होगी।

श्रोताओं, इसी गजल के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का राग ललित में बांसुरी वादन। आपके साथ तबला संगत की है अनिंदो चटर्जी ने।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुना पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का राग ललित में बांसुरी वादन। आपके साथ तबला संगत की थी अनिंदो चटर्जी ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिव कुमार के समर्थकों

0: द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।